FMVO 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतुल केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चतुर्थी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2000

2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हमसे जुड़े सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी का बैतुल केंद्र है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये देवी भजन। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में ये भक्ति गीत।

सुखेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना ये देवी गीत। भक्ति गीतों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आपको सुनवाते हैं नरेंद्र चंचल की आवाज में ये भक्ति रचना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। आइए आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में ये भक्ति रचना।

महेंद्र कपूर की गाई इस भक्ति रचना के बाद आइए आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: हरिओम शरण की आवाज में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हमारी सबसे बड़ी विरासतें हैं और हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारे संस्कार की, हमारे अमूल्य धरोहर है जो हमारी जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। हमारे इन्हीं संस्कारों ने हमारे अन्न को देवतुल्य मानकर अन्न देवता का सम्मान दिया। इसलिए हमारे हर त्योहार में प्रथम उत्पादित अन्न को सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता को समर्पित करने की परंपरा है और इन खुशियों के क्षणों को त्योहारों के रूप में मनाने के लिए उन्हें होली, दीपावली, लोहड़ी, संक्रांति जैसे उत्सवों का नाम दिया जाता है। आज भी कई घरों में भोजन करने के पूर्व मंत्र पढ़कर आचमन कर गौग्रास निकालकर भोजन करने की परंपरा कायम है। हमारी यही भावना भगवान के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने का एक रूप है। आज समय की बदलती दशाओं ने और आयातित संस्कृतियों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। हाईटेक संस्कृति ने खाने पीने के परंपरागत तरीके पंगत संस्कृति को लगभग लुप्त ही कर दिया है। पंगत में बैठकर पत्तल कटोरियों में परोसा खाना अब सिर्फ गांवों में ही यदाकदा देखने को मिलता है। आज डाइनिंग टेबल में कुर्सी पर बैठकर कांटे छुरी से भोजन करना और कराना हमारी आधुनिक शैली बन गई है। आजकल नवीन सभ्यता को अपनाते हुए मेहमान नवाजी को नया रूप बफे सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया है। सुरुचिपूर्ण भोजन का सम्मानपूर्ण नाम कब गिद्ध भोज में परिवर्तित हो गया पता ही नहीं चल पाया। ऐसे बफेट सिस्टम भोज को आजकल स्टेटस सिंबल और कौशल के तराजू पर तौला जा रहा है। मेजबान की ओर से वक्त की कमी और सुविधाओं की समस्या एक आम कारण है जो इस नवीन बफेट सिस्टम खाद्य प्रणाली को और हवा दे रही है। कई बार बाह्य आडंबर और अहम की संतुष्टि भी आंतरिक कारण बन जाते हैं। हम सब अपने आप को पढ़े लिखे और सभ्य नागरिक कहलाना पसंद करते हैं। जब हम पार्टियों में जाते हैं तब लाखों के गहने और हजारों के सूट साड़ियां पहनते हैं और 1500 का लिफाफा भी भेंट स्वरूप देते हैं। इस प्रकार हम सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या हम सही अर्थों में सभ्य कहलाते हैं? जरा सोचिए। आवश्यकता से अधिक भोजन एक ही प्लेट में परोस देना और दो चार कौर खाकर बाकी सारे भोजन को कचरे के डिब्बे में फेंक देना क्या शिष्ट व्यवहार कहला सकता है? क्या हम उसी अन्न देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम हर त्योहार में प्रार्थनाएं करते हैं, पूजन करते हैं? घर के बड़े बुजुर्ग आज भी अन्न के अपमान को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि भोजन का अपमान करने पर अन्न देवता हमें शाप देते हैं और यही शाप हमें अनेक रोगों का शिकार बना देता है। इसलिए यही कहा जाता है कि भोजन जरूरतमंद और भूखे को ही कराना चाहिए और उनकी दवाओं को अपनी सौगात मानकर स्वीकार करना चाहिए। आज हमें स्वयं ये निर्धारण करना है कि हम स्वयं कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं और क्या यही विरासतें हम आने वाली पीढ़ी को देकर जा रहे हैं। अपने घर से, परिवार से और समाज से हमें वही अपेक्षा रखना चाहिए जो हम स्वयं अपने लिए चाहते हैं। आज जब भी उत्सवों में, पार्टियों में ऐसी भरी प्लेटों को कचरे के डिब्बे की ओर जाते देखें तब मात्र दो मिनट के लिए प्रेमचंद की उस बूढ़ी काकी का स्मरण जरूर कीजिएगा जो आज भी जूठे पत्तलों के बीच बैठी आंखों में पानी भरकर खीर पूड़ी कचौड़ी से सजी थाली का इंतजार कर रही है।
0: ये था आज का चिंतन।
2: बच्चों की मनोहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति जिसमें रविवार की सुबह महत्वपूर्ण विषयों पर रहती है चर्चा जारी। नहीं भूलते हम चर्चा के बीच सुनवाना बच्चों को मीठे मीठे गीत। इतना ही नहीं है काफी, नन्हे मेहमान में लेकर आते किस्से कहानियां हमारे नन्हे साथी। देश दुनिया में हमने है ठाना, बच्चों को बताना है दुनिया का ताना बाना। फुलवारी बच्चों की मनोहारी आकाशवाणी बैतूल की प्रस्तुति रविवार सुबह 8:30 बजे।
0: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। 6:35 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीत में प्रस्तुति। स्वर है राजन मिश्र, साजन मिश्र, ए हरिहरण और साथियों के।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुल मणि, शांत चित्त, शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीचराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर थे राजन मिश्र, साजन मिश्र, ए हरिहरण और साथियों के। 6:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। लोकरंजनी में आज के गायक कलाकार हैं किशन लाल मधुकर और साथी।

किशनलाल मधुकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी।

आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी।

किशनलाल मधुकर और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। और इसी के साथ कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आत्मा मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए अब आपको बता देते हैं आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:20 पर आप सुन सकेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। स्थानीय जनउपयोगी सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे का वक्त होगा 7:50।

8 बजे सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर होगी मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त होगा 8:30। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आपके पसंदीदा गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत का वक्त होगा 10:05। महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत का वक्त होगा 10:30, जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं। मुलाकात होगी खेलों में बेटियां और अवसर, इस विषय पर महिला खिलाड़ी या खेल प्रशिक्षक से चर्चा। हेल्थ टिप्स में जाने या किचन टिप्स में आप सुन सकते हैं कम खर्चे में पौष्टिक ग्रामीणकालीन आहार, साथ ही सुनिए फिल्मी गीत। 11 बजे से शाम 5:30 तक आप विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। 5:30 पर सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा अपने शौक के लिए समय निकाले। श्रृंखला मनी मंत्र में जाने बजट बनाना क्यों जरूरी, साथ ही होगी एक मेहमान से मुलाकात और साथ ही सुनिए फिल्मी

शाम 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम गोधुली, जिसमें आज स्वर होंगे शोभा गुरटू के। 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत, गजल, भजन, कव्वाली और गैर फिल्मी गीतों का मिला जुला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सबरस 6:50 पर। 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ग्रामीण भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा का वक्त होगा 7:20, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेत और घर की रखवाली के लिए स्वान भी रखे। साथ ही सामयिक कृषि चर्चा में सुनिए लहसुन भारतीय मसालों में प्रमुख तत्व। भेंट वार्ता लोकगीत के साथ ही सुनिए श्रृंखला बातें खेती किसानी की और कार्यक्रम के अंत में जाने बाजार भाव और मौसम के हाल। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप तक पहुंचाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम हमारा बैतूल, जिसमें आज आप जनगणना 2027 पर केंद्रित अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद कुमार अडलक और तकनीकी प्रभारी श्री आशीष वागादरे से सचिन भागवत की चर्चा सुन सकते हैं। 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से 10:00 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10:00 सुनिए आपके मीत ये गीत। 10:30 पर होगा सुगम संगीत, जिसमें आज स्वर होंगे पंकज उदास के। 11:00 सुनिए हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। ये तो थे आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ।

0: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। फाल्टा चुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा। गंगा दशहरा पर उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, मुख्यमंत्री चढ़ाएंगे 300 फुट की चुनरी। प्रदेश भर में जल संरक्षण का महाअभियान। और नौतपा के पहले दिन 44 जिलों में हीट वेव अलर्ट, 5 जिलों में तेज लू का रेड अलर्ट, 28 मई तक नहीं मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इस समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे, जबकि बाकी पुरस्कार दूसरे दौर में दिए जाएंगे। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार

0: अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे, जबकि बाकी पुरस्कार दूसरे दौर में दिए जाएंगे। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के फालटा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह जीत पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ श्री मोदी ने कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में कंचनजंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक बताया गया है। इस साल सिक्किम अपने राज्य बनने के 91 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर आज प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़िया और नहरों की सफाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मां शिप्रा को 300 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे। अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 1.1 लाख से ज्यादा जल संरक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस पूरे अभियान के लिए सरकार ने 10,666 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 69% राशि खर्च भी हो चुकी है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 मई यानी आज कर दी है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को पर्याप्त समय देने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं पुनर्मूल्यांकन यानी रीचेकिंग के लिए आवेदन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अभिनेत्री त्रिशा शर्मा की मौत के 12 दिन बाद कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्यादा जानकारी दे रही भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता मोहम्मद ताहिर।
1: भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में त्रिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले रविवार को दिल्ली एम्स की टीम ने त्रिशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम किया था। भोपाल एम्स में करीब 3 घंटे तक की प्रक्रिया चली थी, उसके बाद अंतिम यात्रा एम्स से शमशान घाट तक निकाली गई थी। गौरतलब है कि 12 मई की रात भोपाल के कटरा हिल्स में त्रिशा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी त्रिशा शर्मा केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। त्रिशा के पति समर्थ को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद से ही वो 7 दिन की डिमांड पर है। आकाशवाणी भोपाल के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रदेश में गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और रोज पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को 55 करोड़ रूपये अलग से जारी किए हैं। इस बार अच्छी खबर में बात नीमच के किसानों की। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का जमीनी असर क्या है, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता दिनेश प्रजापति।
3: नीमच जिले में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। खेतों में लगाए जा रहे सोलर पंप अब किसानों की सिंचाई व्यवस्था को आसान बना रहे हैं। जिले में सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
4: राजेंद्र गोयल कार्यपालन मंत्री उज्जैन ने बताया कि
5: भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को 90% के अनुदान में सोलर पंप की योजना का लाभ मिल रहा है। किसान को मात्र 10% की राशि इस योजना के तहत देना होता है।
3: सोलर ऊर्जा से लाभान्वित किसान गोविंद पाटीदार का कहना है,
6: किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, हर समय सोलर अपने को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराता है। फसलों को पानी मिल जाता है तो उससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
3: आकाशवाणी

0: समाचार के लिए मनोज सिंह दिनेश प्रजापति।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को शुरू होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के वैश्विक सम्मेलन में पहुंचे। यहां श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। दूसरी ओर डॉ यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास बाघ के हमले में फूलबाई की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतका के परिजनों को 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के लंबे संघर्ष और प्रयासों का नतीजा है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का कहना है कि इससे छात्रों, मरीजों और आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 3 दिन चली ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना कल पूरी हुई। इस बार पूरे प्रदेश में 10,742 गिद्ध गिने गए, जो पिछले साल से करीब 1,200 ज्यादा है। और अब मौसम की आज से महत्वपूर्ण शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। महत्वपूर्ण से एक दिन पहले ही खजुराहो नौगांव में पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का यही हाल बने रहने का अनुमान है। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में कल 2 बड़े नतीजे सामने आए। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया, जिसमें कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात देकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। संक्षिप्त में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल जबलपुर दौरे पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में बच्चों के साथ पौधे लगाए। बिहार जिले के ग्राम बिंजकुआ में नदी किनारे झाड़ियों में मादा तेंदुआ का शावक मिला है। वन विभाग ने सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर इसे इलाज के लिए भोपाल के वन विहार भेज दिया है। खंडवा के नीरज पटेल ने एशियन अंडर 23 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप के 55 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज आगर मालवा में मोती सागर तालाब के गहरीकरण और सफाई कार्य में भाग लेंगे। बैतूल में गंगा दशमी पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्वालियर में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए आज व्यापक कार्यक्रम होंगे। इंदौर में बुजुर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज कलेक्ट्रेट में विशेष शिविर लगेगा। शिवपुरी में डाक विभाग आज और कल विशेष महा आधार अभियान चलाएगा। इंदौरी जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में ही रैन बसेरा बनाया जाएगा। बालाघाट के मोती तालाब उद्यान में भीषण गर्मी के बीच कल 12 चमगादड़ मृत पाए गए। वन विभाग ने शव को जांच के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। 7:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म सीआईडी का गीत। आवाजें हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

क्लासिक फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर यूं ही चलता रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: स्वागत है आपका अंतराल के बाद, और चलिए अब आपको अगला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म बचपन से। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाइस खूबसूरत से गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे सनम का गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आकाशवाणी के बैतुल केंद्र से आप सुन रहे हैं क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म असली नकली का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने।

0: फिल्म कश्मीर की गली के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है स्थानीय जनउपयोगी सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीला पवार का नमस्कार। चलिए आज के स्थानीय सूचनाओं में पहली सूचना आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल प्रदाय से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेयजल व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों को पेयजल संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण और प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम आदि विभागों के पेयजल व्यवस्था से जुड़े समस्त अमले के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल अपरिहार्य

स्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने रविवार को कलेक्टर्स एवं नगरीय निकाय पंचायत पीएचई और नगर निगम के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि वे सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाएं और पेयजल उपलब्धता के लिए अधिकारियों की समिति बनाकर प्रतिदिन समीक्षा करे, ये सुनिश्चित करें कि टैंकर से पेयजल आवश्यकता वाले क्षेत्रों में वितरित हो और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो। उन्होंने टैंकर के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों से संवाद और समन्वय रखकर पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर से कहा कि पेयजल उपलब्धता के लिए युद्ध स्तर पर काम करें, शहरी क्षेत्र की पानी की टंकियों को भरने में समानता रखें और अन्य विभागों के साथ ही ऊर्जा विभाग को भी इस पूरे प्लान में शामिल रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी नल जल योजना का विद्युत कनेक्शन न कटे। मुख्य सचिव श्री जैन ने बताया कि राज्य शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल आदि के खनन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और पंचायतों को संधारण कार्य के लिए 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी गई है, जिससे पेयजल उपलब्धता में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर मैकेनिज्म तैयार करें और नियमित रूप से समीक्षा करें। बैठक में नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पीएचई, ऊर्जा और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।

आज की स्थानीय खबरों में इतना ही। बैतूल जिले की स्थानीय खबरों के लिए सुनते रहिए सुबह सवेरे हर दिन सुबह 7:50 पर।

0: السبيري.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे. कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. कृपया प्रतीक्षा करें.

0: लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और

0: 1058 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से

0: संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
2: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता ने कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
0: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर

हिन्दुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मोन्स सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमरीका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति। हॉर्मोज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मोज खोलने के लिए सैद्वांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है।

0: बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विनम्रता शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूएशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series, People's Padma, on Akashwani.
4: We launched the environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गाँव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र।

0: से साजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
3: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
2: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
3: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
1: अर्धशीर बुड़जोड़जे तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोड़जे तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर। भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंको जनाब।
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक

0: ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
4: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
5: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
3: Well done, Adi. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
6: जी सर,
2: हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
6: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख

0: लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ फ्रेमला और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर। यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गए है सर। फायर। सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
0: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी।

0: निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। बहुत जल्द ही आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, साई शाम रोक लई और चकमक झूम लई।

0: देवदास का ये गीत था। गीत और संगीत थे पंडित बिरजू महाराज के। पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, भारतीय सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्मकार सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इनका असल नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लगभग 5 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया। एक ही रास्ता, मदर इंडिया, सुजाता, गुमराह, वक्त, हीरा, खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, छाया, गबन, जाग उठा इंसान, आम्रपाली, पड़ोसन, रेशमा और शेरा, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में सुनील दत्त ने दी। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुनील दत्त ने अभिनेत्री साधना, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंती माला, नूतन और नरगिस जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बेहद सफल फिल्में की। बाद के दशकों में वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस उनकी शरीके हयात थी। नम्रता दत्त, प्रिया दत्त उनकी बेटियां हैं और सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त उनके बेटे हैं। आज ही के दिन 25 मई सन 2005 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तमाम पुरस्कार तो उन्होंने अपने नाम किए ही। 1968 में अभिनेता सुनील दत्त को पद्मश्री और 2005 में मरणोपरांत फाल्के रत्न पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।

द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कमाल खान की। रजत अरोड़ा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है। लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन के साथ साथ तमाम और वाद्यों को बजाना सीखा। 1963 में इस जोड़ी ने फिल्म पारसमणि के लिए कालजयी गीतों को स्वरबद्ध किया। इससे पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत ने बतौर बाल कलाकार फिल्म भक्त पुंडलिक और 1950 की फिल्म आंखें से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के पत्थर के सनम, इज्जत, साजन, अनजाना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के लिए दिल को छू लेने वाले गीतों को संगीत से सजाया इस जोड़ी ने और लगभग चार दशकों तक सुरीले संगीत का उनका सफर चलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 फिल्मों से अधिक में इन्होंने गीतों को संगीत से स्वरबद्ध किया। हम संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

यकीन दिन पायोस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल हैं। हिमेश रेशमिया का संगीत है।

कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निखरेंगे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चार फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

श्रीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनकी पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: टन गीला कचरा अब शंकरगढ़ प्लांट में खाद में बदला जा रहा है, जहां हर दिन 10 से 12 टन जैविक खाद तैयार हो रही है। दूसरी ओर जंगलों में भी रौनक बढ़ गई है। सतवास, कन्नौन, पागली और निमावर जैसे इलाकों में तेंदूपत्ता तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस साल करीब 1,00,000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। खेती किसानी की बात करें तो कृषि विभाग का किसान रथ गांव गांव घूमकर किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, उन्नत खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दे रहा है। मूंग और उड़द बेचने वाले किसानों के लिए भी जरूरी खबर है। 25 मई यानी आज से 15 जून तक सरकारी खरीद के लिए पंजीयन होगा। इस बार ओटीपी नहीं बल्कि आधार से फेस स्कैन कर पहचान की जाएगी। जनजातीय इलाकों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के जरिए गांव में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देवास में कुपोषित बच्चों के लिए किलकारी अभियान 2.0 उम्मीद बनकर सामने आया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अमलतास अस्पताल में भर्ती कर मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और अब तक 72 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिले में एक टीबी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,457 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जिला जेल निवास में लगे विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्रा ने बंदियों से सीधे चर्चा कर उनके मामलों की जानकारी ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर में विशाल प्लेसमेंट ड्राइव होगी, जहां 450 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित युवाओं को करीब 17,000 रूपये वेतन मिलेगा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सख्त हो गया है। निमावर, फतेहगढ़ और शिप्रा में बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने, सूर्यास्त के बाद नौकायन और मिशन में बोटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के इच्छुक छात्र 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिले के बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया का आरसीटी केंद्र भी सिम का मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करा रहा है, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सामग्री से मुफ्त मिलेगी। कोर्स के बाद खुद का काम शुरू करने के लिए सरकारी लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी। इच्छुक युवक 9893193973 पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर, ग्वालियर की बादल राजपूत ने सरकारी छात्रवृत्ति योजना से 33,00,000 रुपए की मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब दतिया में सरकारी डॉक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे होनहार छात्रों की पूरी एमबीबीएस फीस उठाने का फैसला किया है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: FMVO 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत।

आपके पसंदीदा गीतों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हाजिर हूं आपके रेडियो सखी सुनीला पवार। चलिए ले लेते हैं पहला पत्र जो आया है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से। भेजने वाले हमारे श्रोता है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमेध कुमार दामोदर। और एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं जो आया है छत्तीसगढ़ दतरेंगी से। ये हमारे श्रोता है भागवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये आज सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का गीत। तो आइए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में इन्हें सुनाते हैं फिल्म सौतन का गीत। गीत लिखा है सावन कुमार और प्रदीप कौशिक ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

0: आपके पसंदीदा गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है आपका अंतराल के बाद और ले लेते हैं अगला पत्र जो आया है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका और बलवीर सिंह का, और साथ ही एक व्हाट्सएप मैसेज भी हम शामिल कर देते हैं जो आया है बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से। बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, जिकरा डावर, आयशा खत्री, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म सुहाग का गीत। तो चलिए इन्हें शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में सुनाते हैं फिल्म सुहाग का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये।

फिल्म सुहाग के इस गीत को सुनना चाहते थे पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से इस्लामपुरा सनावद से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी तनमसा, रमेश गौड और मोहम्मद शादाब खत्री। श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो पीले पोस्टकार्ड पर फिल्म के नाम और गाने के बोल के साथ अपना नाम और पता लिखकर भेज दीजिए हमें इस पते पर। पता है अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, पिन है 460001। और यदि आप अपनी फरमाइश व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमें भेज रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। और अब बिना देर किए ले लेते हैं अगला पत्र जो आया है सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। श्रोता है रामेश्वर बागरी, प्रभुलाल बागरी, मनोहर बाई बागरी, हर्षिता, मीनाक्षी, काना, कपिल और पूरा बागरी परिवार। और एक और व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं शास्त्री वार्ड सदर बाजार बैतूल से जो आया है राकेश चौधरी, गीता चौधरी, प्रीति, प्रिया, नव्या, खुशी, गौरव, गौतम यादव, यश, छोटे भाव, शुभ और किशोर का। तो ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं से ये गाना। तो चलिए शब्बीर कुमार की आवाज में हम इन सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना। आवाज है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत लिखा है एस एच बिहारी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक और व्हाट्सएप मैसेज शामिल करते हैं ग्राम ब्राह्मणवाड़ा सारणी से संजू गंजाम, आनंद कुमरे, अहिल कुमरे, देवांश और मुकेश गंजाम का।

चलिए लेते हैं अगला व्हाट्सएप मैसेज जो आया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दूसरा आदमी का गीत। तो चलिए इन्हें लता मंगेशकर और

फिल्म दूसरा आदमी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आई है बीते कल की थकान भुलाकर, आज को मुस्कुराहटों के साथ अपनाने का संदेश लाई है। हर दिन कुछ नया सिखाए, हर पल आपको आगे बढ़ाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं संगीता पलेवार बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने चहेते प्रोग्राम महिला जगत में। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाएंगे जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरिल मैडम से, जिनसे हमने बातें की है बेटियों के लिए खेलकूद कितना जरूरी। पर उससे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे समाज, देश और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। बहनों, किसी भी देश की तरक्की में महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी होता है। महिला केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि वह पूरे समाज को बेहतर बनाने का काम करती है। एक माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उन्हें शिक्षा और अनुशासन का महत्व सिखाती है। यही बच्चे आगे चलकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक महिला का शिक्षित और जागरूक होना पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाता है। आज बहनों, आप देख ही रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खेल हो, सेना हो, या प्रशासन या फिर राजनीति हो। हर जगह महिलाएं अपनी मेहनत और प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर रही हैं। गांव की महिलाएं खेती और पशुपालन में परिवार का साथ देती है, तो शहरों की महिलाएं नौकरी और व्यापार के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। और श्रोताओं, राष्ट्र निर्माण केवल बड़े बड़े कामों से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे काम अच्छे

कामों से भी होता है, जैसे कि घर में बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और स्वच्छता की सीख देना भी राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है और यह काम महिलाएं बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। अब अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो बहनों, इसमें भी महिलाओं की भूमिका बहुत खास रही है। महिलाएं प्रकृति के सबसे करीब होती हैं। वे पानी की कीमत समझती है, पेड़ पौधों की देखभाल करती है और घर में सफाई बनाए रखती है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है बहनों, और ये जो गर्मी हो रही है हमें, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें आज देखने को ही मिल रहा है। बढ़ती प्लास्टिक, पेड़ों की कटाई और पानी की बर्बादी, इन सभी से प्रकृति को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। ऐसे समय में महिलाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर हम बहनें अपने घरों में प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कपड़े के थैले अपनाएं, पानी और बिजली बचाने की आदत डालें, तो इसका बहुत बड़ा असर पूरे समाज पर पड़ेगा। हमारे देश में कई महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायक काम किए हैं। गाँव में महिलाएं मिलकर वृक्षारोपण कर रही हैं, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं और स्वच्छता अभियान में हिस्सा भी ले रही हैं। यह प्रयास केवल पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी जरूरी है। तो श्रोताओं, जब एक महिला जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक बनता है, और जब परिवार जागरूक बनता है तब समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। साथ ही महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर भी देंगे, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में और भी बेहतर योगदान दे सके। और बहनों, हम तो बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप केवल घर की शक्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्र की ताकत है, और पर्यावरण की सुरक्षा में उनका योगदान आने वाले कल को सुरक्षित बनाए रखेगा। तो सखियों, ये थी हमारी आज की बात, और अब वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का। तो चलिए आपको सुनवाते हैं गोपी फिल्म का ये प्यारा सा नगमा।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सभी श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और अब वक्त हो चला है मुलाकात का, तो चलिए मिलते हैं आज के मेहमान से। खेल केवल शरीर ही नहीं बल्कि सोच, साहस और व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और खेल जगत में भी देश का नाम रोशन कर रही है। आज बेटियां साबित कर रही है यदि अवसर मिले तो वे हर मैदान में जीत हासिल कर सकती है। तो आइए, इसी बात पर आज हमारे साथ है पूजा कुरेल मैडम, जो कि जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी है, और इनसे हम जानेंगे कि बेटियों के लिए खेलकूद कितना जरूरी है। नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार,
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे मैडम कि बेटियों के लिए खेलकूद कितना जरूरी है।
2: आपसे यही कहना चाहेंगे, जितना खेल बेटों के लिए जरूरी है, हमारे पुरुष वर्ग के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी हमारी बेटियों के लिए है। क्योंकि बेटियां जब खुद खेलती हैं तो वो सिर्फ खुद ही नहीं खेल रही हैं, आगे भी एक सोच रखती हैं कि हमें अपने समाज को बढ़ाना है। एक बेटी यदि खेल के आगे, जब उसके आगे शादी होती है तो उसके बाद भी उसकी एक ये सोच होती है कि मुझे अपने परिवार में अपने बच्चों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है, उसे भी खिलाना है, उसे भी सशक्त बनाना है। वो सिर्फ खुद खेलती है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद खेल रही है, उसके खेलने से पूरा समाज जो है वो डेवलप हो रहा है, वो अपने घर परिवार को सशक्त बना रही है, डेवलप कर रही है। कि मतलब आपको अगर कैरियर नहीं बना सकते

0: लेकिन फिर भी हम फिटनेस के प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता जो है इसके माध्यम से ला सकते हैं, और यदि महिला फिटनेस के प्रति जागरूक है तो वो अपने पूरे परिवार को भी फिटनेस के प्रति जागरूक रखेगी, है वो हर प्रयास करेगी कि हमारे जो परिवार का हर एक सदस्य है वो फिटनेस के प्रति जागरूक रहे।
1: बहुत अच्छी बात कही मैडम। और जैसे कि मैडम हमने सुना है कि खेलों से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तो ये कितना सही है?
0: जी बिल्कुल, ये तो मतलब 100% ये सही बात है, क्योंकि कोई भी बच्चा पहले आप देखिए कि जब शुरू में घर से बाहर निकलता है तो वो बहुत संकोची होता है
1: जी।
0: वो हर चीज के लिए सोचता है, उसको इतना माहौल नहीं मिला होता है, इतने सारे बच्चे, इतना फ्री माहौल। मतलब स्कूल जाता भी है बच्चा तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन में पूरे समय रहता है कि उसे पढ़ाई करनी है, या एक लिमिटेड जो माहौल रहता है उतना फ्री नहीं हो पाता बच्चा। परंतु स्पोर्ट्स में आके उसको हर प्रकार की यहाँ परिस्थितियाँ मिलती हैं, अच्छी भी बुरी भी। सभी प्रकार के जो बच्चे हैं यहाँ पर होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेन कराया जाता है कि आपको हर प्रकार के माहौल में ढलना है
1: जी।
0: यदि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है तो भी आप बिल्कुल अच्छा करिए, लेकिन अगर कहीं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो भी उन मुसीबतों को झेलते हुए या वो प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको आगे ही बढ़ना है।
1: तो इस तरह उनके अंदर एक लगन और एक आत्मविश्वास जागता है कि हम आगे बढ़ेंगे
0: जी।
1: लेकिन मैडम एक सोच है समाज की कि वो बेटियों को खेलकूद से दूर कर रही है, जैसे कई लोग होते हैं कहाँ जाएगी खेलने, क्या करेगी, इस तरह की कई सोच होती है जो हमारी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देती।
0: ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप इस सोच को बिल्कुल भूल जाइए, आज हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, और जब बेटियां कहीं भी निकलती हैं बाहर तो वो खुद भी एक सशक्त बनती हैं, वो सारी चीजें सीखती हैं, अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस करके आगे चले, किस माहौल में कैसा व्यक्ति है, व्यक्ति को पहचानना सीखती है वो। मतलब वो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि वो अपने आप को तो डेवलप करती ही है, साथ में अपने परिवार समाज को भी करती है, और दूसरी चीज बच्चियां आगे बढ़ती हैं, सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रही है। आज जहां तक हमारे यहाँ हॉकी ग्राउंड में देखा जाए, मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड में छोटी छोटी बच्चियां आती थी जो शुरू में आती हैं एकदम संकोच करती हैं, आपस में बात नहीं करती हैं, खुलती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही बच्चियां इतनी फ्री हो जाती हैं कि आप अगर इन बच्चियों के भरोसे अगर 10 बच्चों को भी छोड़ देंगे तो वो खुद भी अपने सेफ रहेंगी और वो 10 बच्चों को भी संभालेंगी और उनको सिखाएंगी, उनको आगे के लिए जागरूक करेंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इतनी समझदार हो जाती हैं, चाहे वो बच्ची हो या बालक हो, कोई भी हो
1: जी। मैडम क्या खेलों में कैरियर बनाने के अवसर है, जैसे खेल कूद के माध्यम से हम अपने आगे की रोजी रोटी भी चला सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, खेलों में पहले से भी कैरियर रहा ही है और अभी और ज्यादा कैरियर हमारे सामने आ रहे हैं। आप चाहे तो कैरियर जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसका आप वो ज्वाइन करके स्पोर्ट्स में कैरियर बना सकते हैं, स्कूल्स में ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आजकल ये न्यूट्रिशन है, डाइट्स है, स्पोर्ट्स साइंस है, ये सारी चीजें। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स को लेके खाली एक दो सिर्फ जो कोचेज है या ये पोस्ट है, आजकल बहुत सारी पोस्टें निकल चुकी हैं जो स्पोर्ट्स को लेकर काम करते हैं इस क्षेत्र में।
1: मैडम तो, जैसे देखा गया है कि खेलकूद से शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ता है, आजकल मोबाइल की दुनिया में बच्चे घर से बाहर निकलते नहीं है खेलकूद के लिए, और बेटियां भी बाहर जाना पसंद नहीं करती, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मोबाइल आप चलाएं लेकिन उसका अच्छे रूप में उपयोग करें और सीमित समय के लिए करें तो मोबाइल अच्छा है, परंतु उसके अलावा हमको कुछ टाइम बाहर ग्राउंड में जरूर देना चाहिए। आप अगर ग्राउंड तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप वॉकिंग करके कहीं टहलने चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, कहीं ग्राउंड चले जाइए, कहीं गार्डन है, कहीं ना कहीं कहीं जिम लगे हुए हैं, ओपन जिम है, खुले में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी न किसी एक्टिविटी से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि आपके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत आगे मायने रखती है, क्योंकि आज हम यंग है तो समझ में नहीं आता है मगर आगे चल के यही फिटनेस बहुत मायने रखती है।
1: जैसे कि मैडम आपके यहाँ जो बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही है, लेकिन क्या ये बच्चे पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं?
0: जी हाँ, ये बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, इनको शुरू से ही ऐसा प्रशिक्षण आकर्षित किया जाता है कि आपको खेल रहे हो तो खेल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आप अगर सिर्फ खेलोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो आप खेल के क्षेत्र में भी आगे

0: नहीं बढ़ पाओगे और ना ही शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप ना अपना जो एक आगे सोच रहे होगे कि कुछ जॉब मिले या कुछ कैरियर अच्छा हो, दोनों ही नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई करनी है। हम लोग हमेशा बच्चों की तरफ ये ध्यान देते हैं कि आप यहाँ आ तो रहे हो, लेकिन इसके अलावा आप स्कूल जा रहे हो कि नहीं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। हमारे प्रशिक्षक सभी ये बच्चों का ध्यान रखते हैं और उन्हें जरूर नॉलेज लेते रहते हैं कि आपने मतलब क्या किया है, क्या नहीं किया है, स्कूल में कब क्या प्रॉब्लम है। मतलब उस बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि सिर्फ स्पोर्ट्स में आके किसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में वो पीछे रहे।
1: मैडम, जैसे कि देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो विद्या होती है वो हालांकि शरीर से बहुत फिट होती है शहरी लड़कियों की तुलना में, क्योंकि गांव में ज्यादा काम होता है और एकदम शुद्ध हवा पानी और वहां के जो रहन सहन है वो थोड़ा अलग होता है, वो फिट होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खेलकूद में अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: बस यही कहना है कि गाँव में संसाधनों का अभाव होता है, जिसके कारण बहुत जगह ये हो जाता है कि बेटियां यदि खेलना भी चाहे तो नहीं खेल पाती है। उसने ग्राउंड्स नहीं है, वहाँ कोचेस की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने में आती है। अब जैसे कहीं स्कूल में भी ग्राउंड है मगर उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है, तो इसी प्रकार मतलब स्कूल में अगर वो कुछ टाइम जुड़े हुए हैं या खेल ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पीरियड हो रहा, तो उसके अलावा उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। बस हमारा ये प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है बेटियां और जो हमारे कोई भी बच्चे हैं वो सीखे। हमारा खेल और युवा कल्याण विभाग इस पहल कर रहा है, जो मतलब जहाँ पर भी ग्राउंड चल रहे हैं हमारे जो खेल विभाग का प्रयास होता है कि वहाँ बच्चे निरंतर आए और अभ्यास करें। हमारे द्वारा उनको कुछ खेल सामग्री भी प्रदाय की जाती है कि बच्चे किसी न किसी प्रकार से खेल से जुड़े। और हमारे अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उसमें युवा समन्वयक होते हैं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ जुड़े होते हैं, वहाँ गतिविधि संचालित करते हैं और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देकर उन बच्चों को सही जगह तक पहुँचाते हैं और टूर्नामेंट्स है वहाँ पार्टिसिपेट कराते हैं, या अलग अलग आयोजन जो खेल विभाग द्वारा किए जाते हैं या अन्य विभागों द्वारा भी किए जाते हैं, उन बच्चों तक जानकारी दी जाती है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
1: बहुत बढ़िया, जो प्रयास आप बेटियों के लिए कर रहे हो, और ऐसा कोई संदेश जो आप बेटियों को देना चाहेंगे कि वे खेलों में आगे बढ़े और आए खेले?
0: मेरा बस यही कहना है कि बेटियां जरूर आए, चाहे कोई भी खेल खेले मगर जरूर आगे जाके ना जो कुछ टाइम है उसमें स्पेंड करे। अपनी जो बेटियां हैं अगर खेलों से जुड़ती है तो खुद की तो फिटनेस बनाती है, इसके साथ साथ वो आगे भी जो एक छोटी बच्ची होती है धीरे धीरे धीरे वो बड़ी होती है, तो वो आगे ये एक जब वो मजबूत नारी बनती है तो वो अपने परिवार को भी वैसे ही सशक्त रखती है, अपने परिवार में शुरू से ही ऐसा माहौल रखती है,
1: डिसिप्लिन भी रहता है।
0: डिसिप्लिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक खिलाड़ी है वो डिसिप्लिन में होता है और उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। जो भी खिलाड़ी होगा एक खिलाड़ी बच्चे में एक सामान्य बच्चे में बहुत अंतर होता, अलग ही दिख जाएगा उसकी फिटनेस, उसके बात करने का ढंग, उसे पता हर एक जो समस्या है वो नॉर्मली बड़े इजी वे में सॉल्व कर लेता है, मगर एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो थोड़ा उसको उस चीज में डिफिकल्टी होती है, थोड़ी परेशानियां आती है, मगर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो हर परेशानी को आसानी से झेलते हुए उसे जल्दी से जल्द पार कर लेते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने। और अभी चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या है। हम देख तो रहे हैं कि आप खेलों में बहुत इंटरेस्ट लेती हो, इसके अलावा आप संगीत सुनना पसंद करती हो?
0: जी मतलब मेरा भी इंटरेस्ट शुरू से रहा है, हम खुद भी एक हॉकी प्लेयर ही रहे हैं और पूर्व में हॉकी कोच भी रहे हैं और आज जो जिला खेल अधिकारी के पद पर आए हैं वो भी इस खेल के वजह से ही आए हैं, क्योंकि मेरी भी शुरू से रुचि खेलों की तरफ ही रही है।
1: जी,
0: तो मेरा पूरा ध्यान खेलों की तरफ रहा है। इसके अलावा मुझे गाने सुनने का भी शौक है।
1: तो किस तरह के आप गाने सुनना पसंद करती हैं?
0: वैसे तो बहुत से गाने होते हैं मगर जैसे अब हॉकी से जुड़े हैं तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, चक दे इंडिया का।
1: जी
0: चक दे इंडिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: जी, आपको ये गाना हम जरूर सुनवाएंगे और उसके पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए डाला। नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।

0: भी ऐप से वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब सखी श्रोताओं, किचन टिप्स में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कम खर्च में पौष्टिक ग्रीष्मकालीन आहार। बहनों, गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर को ज्यादा पानी, ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा और पौष्टिक भोजन बहुत ज्यादा महंगा ही हो। हम कम खर्च में भी अपने परिवार को स्वस्थ और ताजा भोजन दे सकते हैं। गर्मियों में हमें ज्यादा तली भुनी चीजों की बजाय हल्का और घर का बना भोजन ही खाना चाहिए, जैसे कि दाल चावल, मूंग दाल की खिचड़ी, छाछ, दही, हरी सब्जियां और मौसमी फल। ये सस्ते भी होते हैं और शरीर को ठंडक भी देते हैं। ऐसे ही श्रोताओं, घर में बना नींबू पानी, बेल का शरबत, आम पन्ना और सत्तू गर्मी से बचाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बाहर के महंगे और ठंडे पेय पदार्थों की जगह ये घरेलू पेय स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बहनों, रोज के भोजन में खीरा, ककड़ी, तरबूज और प्याज जैसी चीजें जरूर शामिल करें। ये शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देते और साथ ही अंकुरित अनाज जैसे कि चना और मूंग भी कम खर्च में अच्छा पोषण देते हैं। एक और जरूरी बात, खाने को बर्बाद न करें। बची हुई दाल से पराठे या चीला बनाया जा सकता है। इस तरह हम पैसे की बचत भी कर सकते हैं और भोजन का सही उपयोग भी। तो आइए बहनों, इस गर्मी में हम सभी सादा, पौष्टिक और घर का बना भोजन अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो भाई सखी श्रोताओं, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम महिला जगत। और अगली मुलाकात तक दीजिए अनुमति संगीता पल्हेवार को। नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम का यह पहला गीत, जो कि है एक भक्ति गीत। इसे लिया गया है हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से। चित्रा सिंह की आवाज है, रायदास ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

चेहरा सुधे बना।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में हम तो है परदेश में, यह गजल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स। इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घुलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, द खजाना कॉन्सर्ट, पीनाज मशानी की आवाज में मधुरानी की संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा इस एल्बम से। सोनाली जलोटा की आवाज में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वीं स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक

0: पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत आए दिन बहार के फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
5: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करे। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं, बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी

जिंदगी भारती जरूर है लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं सुकून बनाकर पेश करता है, ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा। बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं। आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसकी गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनकी पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत, लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को। और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज हम आपके गीत भजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी की लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है, आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि आवाज सुनने वाले नहीं थे लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमान में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज

दो, कागज कलम उठाओ, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो। जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो। हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है, और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा, ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है? और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है।

के गायक कलाकार कौन है, और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी, बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है। उसमें उन्होंने उस अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है। अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत नाग फिल्म से साहिल लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक है आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे

हम सुन रहे थे भाभी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज को पहचान लें तो हमें जरूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार है वो शैलेंद्र सिंह है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को गर्म किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो देखिए असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो है वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का इजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि चुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपने

चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति, प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं, और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है, आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है? जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, 10 संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले कायम है।

संगीत की मधुर पाठशाला हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी भारतें लिखी है। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का दराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीली गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे चीनी की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं, तो हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज्यादा गाए हैं, कोई कह रहा है मोहम्मद रफी ने ज्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, जरूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई, बरसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बेटी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, सभी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यही समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब माननीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सबका ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठकर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। तो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने

कौन सा विषय लिया है इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

0: तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में।
1: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में धार में प्रदेशव्यापी जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री

0: आज धार की गौशाला में मां वाग देवी पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जन समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्थानीय कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट निर्माण जैसे जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नीमच के हाथी मंदिर घाट पर साफ सफाई के लिए श्रमदान किया गया। वहीं अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर और रायसेन सहित प्रदेश के सभी जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल किए जाने का निर्देश दिया है। भोपाल में राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आज आयोजित स्कॉलरशिप वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। डॉ यादव ने छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हजारों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिले में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर है, इसलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। कल यानी रविवार को खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे, जहां पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में 42.7, ग्वालियर में 44.1 और जबलपुर में 45.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी। 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। इस वर्ष की हज यात्रा में भारत से लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भवानी जिले के गौरव दिवस पर आज मां नर्मदा के घाट पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज पेयजल समस्या, खाद वितरण, उपार्जन की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रूपये और डीजल 99.74 रूपये हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।

0: किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोते

0: और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वें वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों

0: चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टॉकहोम के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डेगू केश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंजनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4थे स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है जलदीप। फिल्म से सुधा मल्होत्रा स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

من فاتي فقط.

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलमारा फिल्म का यह गीत। आशा भोसले की आवाज में शेवन रिजवी ने इसे लिखा और ए.आर. कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं, बोल शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनाऊं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
3: आई राधे यमुना के तट पर नीरत करत उत नीरत करत उत हिरत बीरत उत हिरत बीरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तथई राम तथई।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल है और सचिन देवबर्मन का है संगीत।

ಮಾಮ ಮಾಮ ಮಾಮ ಮಾಮ.

0: feliz. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: आरती जी, स्वागत है आप सभी का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका भी है। और आज हम दोनों पहली बार शायद
0: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और हम सभी अपने श्रोताओं को, सभी सखियों को, सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी, एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
0: जी।
1: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारे मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि, इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
0: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
1: जी हाँ।
0: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
1: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
0: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
1: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
1: जी आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
0: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो
1: रसिया हम सुनते भी हैं,
0: बिल्कुल
1: गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
0: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
1: मीठा होता है।
0: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
0: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

0: अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई, हाथ में पाटा लेकर। वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: है? ये क्या हुआ? हाय राम दैया रे दैया बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई। लागत का है सच्चो मर गई। आए हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया अम्मा जी।
2: माँ जी ये तो गजब हुई गवा, बिल्ली की हत्या। आदमी की हत्या तो बराबर है ना, हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ
3: कहती तो ठीक हो तुम सब, अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब कहा हुई अम्मा जी? हाँ कहो तो पंडित जी को बुला ले हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी।

0: पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
1: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब बंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्मू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहुत से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
2: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
1: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
3: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
1: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
1: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
2: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
2: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
1: क्या जाए? हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
2: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना? पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है।

0: कृष्ण हरे कृष्ण।
1: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
2: हरे

0: दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
1: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
1: ओ नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
0: रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला।
1: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए। बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
1: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
3: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अम्मा जी।
1: हाँ।
4: ये तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
4: अरे हुआ का, बता
1: बताए
4: अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या? क्या बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में।
1: हाँ।
0: और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो
1: माना
0: करो अब तक मान गए होंगे
1: जी।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तो लकी क्या कर सकते
1: क्या
0: हैं पर हाँ जी
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल बहुत रोचक मुकाबले होते हैं और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: उनके बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं जिसका विषय रहता है सक्रिय है।

0: बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: और ये जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
0: बिल्कुल
1: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है। संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस पे, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
0: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय है।

0: और उड़ान मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह बहुत बढ़िया।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और
1: जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
0: बहुत बढ़िया चीज है ना। देखिये बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत
1: बढ़ेगी
0: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जो हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
1: जी

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है, जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती है। ये तो सही बात है, टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: सही बात है, और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है। और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सबके लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, कहीं घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते ही मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई है और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे ये पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: पर अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वो चीज वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पूड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जो अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती है उनके लिए जो दवाइयां रहती है वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें।
0: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है,
1: क्या
0: वो होता है टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम,
0: सबसे पहला काम अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें, और समझ लिया जब

0: हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है
1: अच्छा।
0: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसमें झगड़े होते हैं कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सके इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना न केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा,
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें जरूर होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है, साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे जो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए, सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है। ये बहुत जरूरी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास रखे होंगे, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें, यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ओआरएस की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती है तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल,
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही, हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सपरिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने, बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा, अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ में तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती, और मैं इसमें 2 चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और

0: हाँ के भोजन,
1: हाँ
0: इनका आनंद जरूर लीजिए, जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल,
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: मतलब है।
1: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में, बोलते थे रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग

0: बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं।
1: हाँ,
0: अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदारू, कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं, तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए।
1: अच्छा।
0: मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और उसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बताते हैं, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छान कर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए, और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो है, और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए, और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए, और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, और इसे ठंडा करके भी पी सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा,
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में
1: स्वेलिंग से। बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना, बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है, ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं स्थान के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है, कहा एक जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले डाल दीजिए।
0: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी है, कहीं इधर खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: विधि
0: विधि सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूं, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूं, हंस रही हूं चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे

0: आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए. जिंदगी खुश रहने के लिए है और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए.
0: तो आज की सखी सहेली में बस इतना ही. समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ. अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार.
1: नमस्कार. अनुश्री पाठक
2: सखी सहेली.

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पर आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी,
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगे ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीन में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छूकर मेरे मन को किया तूने इससे हमें शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैन फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें अपने हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हटके सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी।
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो

0: होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगे, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे
1: हाँ,
0: बॉडी पर।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: निदान
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडी में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
0: अच्छा
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: तो ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
1: पॉजिटिव
0: जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
1: हाँ, रेंज
0: है,
1: के बाहर,
0: रेंज
1: हाँ,
0: के बाहर,
1: हाँ,
0: तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, ठीक है। और जब

0: T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीत में बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार।
0: काला बाजार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही

0: इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
1: जी जी
0: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस। अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन एंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि इसका जड़ क्या है, एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़, तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी।
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
1: आसान हो जाती है।
0: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धीरे रखने की जरूरत है,
0: जरूर
1: लेकिन प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: सुबह का एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हम को। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, पड़ी है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है आग बबूला होना।
0: जी जी,
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग से एक
0: फोबिया,
1: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे

0: आपसे ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाता है, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल। अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो वाला ना,
1: सारी विषैली चीजें,
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीज है, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंगवर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
1: जी।
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे में, आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा।
0: बैजू बावरा
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बेजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात
1: है। दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायरॉइडिज्म में स्वेटिंग, मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखिए, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा

0: मायूस
1: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब ये यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम है, तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: है, क्योंकि जैसे ही आप, थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
1: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
0: जी
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
0: जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का, मतलब आहार का, एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
0: कोई भी मौसमी एक जो फल
1: मौसमी
0: है वो खाना
1: खाना,
0: चाहिए।
1: खाना हो या फल हो, ये खाइए। और पानी, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए, इससे जब ज्यादा आप पानी पियोगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए, मैं उठा लूंगी। मुझे 10 किलो दे दिया जाए, क्या मैं उठा पाऊंगी?
0: बहुत प्रेशर
1: नहीं।
0: पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, टी थ्री किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है। यस,
0: ओहो क्या बात।
1: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
0: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है
1: जरूर।
0: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
1: उतना ही है।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो
1: बड़ी
0: चाइनीज फूड में
1: खतरनाक
0: ज्यादा
1: है।
0: इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बोला आपने।
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
1: हाँ
0: इतना
1: कम
0: तो
1: कर
0: कर
1: दीजिए।
0: सकते।
1: मैं ये
0: जी
1: भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल
1: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो, बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय

भला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ।

0: साहब बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया जुबरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

की उड़ान धरती और आसमान के परे है, मन की उड़ान शहरों समुद्रों पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले।

क्या सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

0: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा
0: हम अभी हासिल हुए।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी

जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर बड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चने जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

फिल्म आहिस्ता आहिस्ता आज का चाय गीत इतना ही। इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: दो जून
1: सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की धूम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

वो भले ही तपती मई हो या सुलगता सा जून हो, जहन में शिमला, मसूरी और देहरादून हो, ताल में हम ताल देकर कहीं गाते फिरे, गर्मी की छुट्टियों का ये नया कारवा आजमाते चले। हम पहाड़ों की सुरीली वादियों में गा उठे, प्रकृति के शुभचिंतक ना रहे कभी झूठे। एक सा मौसम कहीं भी क्यों भला होता नहीं, कुदरत का ये करिश्मा कभी सोता नहीं। तो एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना रेडियो होस्ट मोहन मदान। दोस्तों, माना कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन इस भयानक सी गर्मी में भी घर बैठकर एसी कूलर का आनंद लेने में आप भी तो मस्त हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में भी हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको दिलाएगा एक ताजगी भरा एहसास। इसलिए आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज होगा कुछ एक्स्ट्रा खास, जहां हमारी आज की बात का विषय होगा अपने शौक ले कैसे निकाले समय। इनसे मिलिए में गर्मी से कैसे रहे सुरक्षित, इस पर सीधी बात होगी डॉक्टर आनंद नरवरे से। मनी मंत्र में बताएंगे बजट बनाना क्यों है जरूरी। फिल्मी गीतों का कारवा होगा और भी शानदार। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारी आज की बात की ओर। हम सब जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ मजेदार सीखना चाहते हैं, पर जब करने का वक्त आता है तब सिर्फ एक शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता। चाहे खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी हो, अपनी पढ़ाई पूरी करनी हो, या फिर रेगुलर टाइम टेबल में कुछ बदलाव लाना हो, वक्त का बहाना हमेशा आड़े आता है। दोस्तों, असल बात यह है कि समय किसी के पास नहीं होता, इसे लाना पड़ता है। दिन भर में सिर्फ थोड़ा समय ही काफी होता है किसी भी काम को करने के लिए। बस हमें बहाने छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सही प्लानिंग से इसे संभव बनाया जा सकता है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए पहले के काम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, तो समय आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। अपनी सोच बदलें और काम को पूरा करने की इच्छा मन में रखें। पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किस काम को प्रायोरिटी देना है। इसे हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉब के साथ साथ पढ़ाई पूरी करने के लिए समय निकालना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, या फिर कोई नई चीज सीखने के लिए वक्त देना। इसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। पर याद रखें, एक समय में एक ही काम करें। नए काम के साथ दूसरे काम का मैनेजमेंट कैसा होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। प्लानिंग हर दिन के हिसाब से होगी। खुद को वक्त देने के लिए कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, अगर आप योग और ध्यान के लिए वक्त निकाल रहे हैं, तो इसके लिए 20 से 25 मिनट काफी है। इसके अलावा भी ऐसे कई काम हैं जिन्हें आप जरूरत अनुसार समय दे सकते हैं। धीरे धीरे समय भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब जब तक आप इसके आदी ना हो जाएं। अपनी रेगुलर लाइफ में खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए एक व्यवस्थित टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। जब आप सही समय पर सोएंगे और सही समय पर जागेंगे, तब ये चीज मुमकिन हो पाएगी। सुबह देर से उठने के बाद हर काम देर से होगा, और इस बात को मैं अपनी डेली लाइफ में तो खुद महसूस करता हूँ। यदि मैं एक दिन भी लेट हो जाऊं तो मेरा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, फिर हर चीज लेट होती है। तो सीधी सी बात है, हम खुद के लिए समय कहाँ से निकाल पाएंगे। जब हम खुद के लिए समय बिताते हैं तो हम फिर से तरोताजा महसूस करते हैं। ऐसे में आप बिजी लाइफस्टाइल में कुछ टिप्स अपनाकर अपने लिए समय निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। हर काम को एक शेड्यूल के हिसाब से करना है। एक दिन पहले ही इसे तैयार कर लें। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो पूरे दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर खुद के लिए समय निकाल सकते हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट का कॉफी ब्रेक, मेडिटेशन, वॉकिंग शामिल है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप ऑफिस से छुट्टी लेकर आराम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब सुनते हैं किक पिक्चर का ये सॉन्ग।

0: तो दोस्तों, इस गाने के बाद आपका स्वागत है। हाल ही में गर्मी के कारण टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादातर लोग थकान, चिड़चिड़ापन या कम नींद जैसी समस्याओं का बहुत ज्यादा सामना कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी से काम में फोकस भी कम होता जा रहा है। बिना वजह हम लोग बात बात पर गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। बस इन्हीं कुछ बातों का समाधान करने के लिए युववाणी के सुगम संध्या में हमारे साथ मौजूद है बैतूल जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर आनंद नरवरे जी, जो हमें बताएंगे कि इस बढ़ती गर्मी में भी कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखकर और योग को अपनाकर हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी को भी कैसे दूर कर सकते हैं। सर, युववाणी के इस विशेष क्रम इनसे मिलिए में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं डॉक्टर आनंद नरवरे।
0: सर, आप और हम सभी महसूस कर रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल सा हो गया है। ऐसे समय में हमें क्या टिप्स अपनाना चाहिए जो हमें गर्मी से राहत दिला पाए?
1: इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस साल सुपर अलनीनो, मतलब अलनीनो से भी तेज, 150 साल बाद सुपर अलनीनो आ रहा है। इस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली, हम सबको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। और जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा आप पालन करेंगे तो हम बीमारियों से और गर्मी के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे।
0: सर, वैसे गर्मी को लेकर बड़े लोगों की एडवाइस भी बहुत मायने रखती है, ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं?
1: एक्चुअली हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, उनने बहुत, उन लोगों के पास तो कूलर एसी उस जमाने में नहीं होता था, फिर भी वो इतनी गर्मी का सामना करते। तो हमें उनकी सारी बातें, जैसे कि पानी कैसे पीना है, हमें कब उठना चाहिए, कब काम करना चाहिए, कैसे घर से निकलना है, प्याज रखना है, इन सब बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, उसको दिल से मानना चाहिए। क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने जो कुछ कहा है अपने अनुभव और पीढ़ियों के अनुभव के हिसाब से कहा है। तो मेरी भी आप सबको यही सलाह रहेगी कि इतनी गर्मी है तो हमारे बड़े बुजुर्गों की बातों को माने, घर से दोपहर को ना निकलें, सिर ढक के निकलें, जब भी निकलें तब जेब में हमारे प्याज रहना चाहिए, हम लोगों को तुरंत पानी नहीं पीना है। ऐसे अनेक बातें जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए।
0: सर, इन दिनों में घर से बाहर निकलने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम गर्मी से बच सके या फिर कह सकते हैं हम सुरक्षित रह सके?
1: बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इतने गर्मी में हम बाहर निकले तो कैसे अपने आप को बचाएं। तो पहला मेरा तो यही आप सबको सलाह रहेगी कि इस भरी गर्मी में हम दोपहर को 12-1 बजे के बाद ना निकलें, शाम को 4 बजे के बाद ही निकलें, और जो भी काम हो जल्दी सुबह या शाम को देरी से करने का प्रयास करें। अगर किसी बहुत महत्वपूर्ण कारण से हमें निकलना भी पड़ता है तो हम पूरे सर को ढक कर निकले, कैप पहने, गॉगल पहन कर निकलना चाहिए, घर से हमें भरपूर पानी पीकर निकलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, हम पानी पीते हैं तो टेम्परेचर

0: टीचर और लू से हमें लड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जब भी निकले हमारे जेब में प्याज जरूर रखना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है। इससे हमें काफी मदद मिलती है लू से लड़ने में। अकेला पानी ही नहीं, छाछ या लस्सी भी हम पीकर घर से निकलें, और कोशिश करें कि हम छाया से चलें, छायेदार रास्ते से चलें, और बहुत लंबे समय तक अगर हमें धूप में खड़े रहना है तो बीच में छाये में आते जाते रहें। ठीक है
1: सर, अक्सर ऐसे देखा जाता है कि कई लोग धूप में ही काम करते हैं, उनका रोज का काम होता है कि उन्हें धूप में ही काम करना है और इस कारण उनको लू लग जाती है। इस लू से हम कैसे बच सकते हैं?
0: तो सही सवाल है। बेचारे हमारे कुछ भाई बंधु हैं, जैसे जो हमारी फील्ड के भी हैं, जो बेचारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, वो दिन भर धूप में चलना पड़ता है उन्हें। छोटे शहर छोटे गांव, बड़े शहर बड़े गांव, इसी प्रकार अनेक कंपनियों के एजेंट्स हैं, हमारे हमाल भाई हैं, मजदूर भाई हैं, दिन भर धूप में काम करते हैं। मेरा इन सबको एक ही सलाह रहेगी कि आप भरपूर पेट भर सुबह नाश्ता करके निकलें, दोपहर में अच्छे से भोजन करें। भरपेट भोजन आपको लू और गर्मी से लड़ने में मदद करेगा। दूसरा, प्लेंटी ऑफ वाटर, आप पानी की मात्रा बिल्कुल अपने शरीर में कम ना होने दें। भोजन में भी आपके रसेदार सब्जियां होना चाहिए, कढ़ी छाछ लस्सी, इनमें से कुछ ना कुछ आपके दिनचर्या में रहना चाहिए। प्रचुर मात्रा में सलाद रहे, कोई ना कोई फल आप भोजन में जरूर रखें। इसके अलावा लगातार काम न करते रहें, बीच में छोटे छोटे शॉर्ट ब्रेक जरूर लें। आप एक डेढ़ घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लें। हमारा मानव शरीर जो है ना, इतने अधिक तापमान में काम करने के लिए नहीं बना है। हमारा मानव शरीर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करने के लिए बना है, लेकिन इस समय अत्यधिक गर्मी हो रही है अलनीनो सुपर अलनीनो की वजह से। तो हम ये चाहेंगे कि हम काम करें, काम के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। डेफिनेटली सबको ही काम करना है, बेचारे हम लोग को छुट्टियां भी नहीं देती कंपनियां इन लोगों को इतना। तो एक डेढ़ घंटा काम करने के बाद हर 10 मिनट आप रेस्ट जरूर करें, उसके बाद पुनः काम करें। पानी को, शरीर को हाइड्रेट रखें पानी से या ORS से, अपने शरीर को हाइड्रेट रखते जाएं और फिर काम पे निकल जाएं। और जो उतरती धूप का समय रहता है शाम 3-4-5 बजे का, इस समय हो सके तो बेहतर कहीं छाया में गाड़ी खड़ी करके घंटा डेढ़ घंटा आराम करें और फिर काम पे निकलें आप। तो इसके अलावा सुबह व्यायाम करें, कुछ योगासन करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, तो जरूर आपका शरीर भी तरोताजा रहेगा, मजबूत रहेगा, और इस प्रकार की गर्मी से हम अच्छे से लड़ सकते हैं।
1: जी, आपकी बातों से समझ में आता है कि शॉर्ट ब्रेक्स लेने से हम गर्मी से बहुत अच्छे से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, शॉर्ट ब्रेक हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम इतना ज्यादा गर्मी में हमारे शरीर की ऊर्जा का लॉस होता है, तो जब हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं ना, तो हमारा शरीर उस ऊर्जा को वापस से संग्रह करता है और अगले एक डेढ़ घंटे के लिए हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाती है।
1: सर, वैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि धूप से आते हैं तो तुरंत कूलर पंखा चालू कर लेते हैं, या फिर कहते हैं कि एक सांस में ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन घर के लोग ऐसा करने से उन्हें मना करते हैं। इसके पीछे क्या साइंटिफिक इफेक्ट होता है, क्या कारण होता है?
0: एकदम सही बात है, यूजुअली बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे या फिर हम जैसे कुछ युवा लोगों की आदत होती है। जैसे ही फ्रिज खोला, बॉटल सीधे मुंह में लगाई और गट गट गट गट करके अत्यधिक ठंडा पानी पी लिया, या आते से सीधे एसी ऑन किया और 18 से 20 के टेम्परेचर में रहे। ये ना एकदम गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम गर्मी से आते हैं तो हमारा शरीर का तापमान अधिक होता है, और एट द सेम टाइम हम एकदम से ठंडा लेते हैं कुछ भी, अब बर्फ ले लेंगे या बर्फीला ठंडा पानी या एसी का ठंडे एसी में, तो टेम्परेचर डिफरेंस को हमारी बॉडी इतने जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो उससे क्या होता है, एकदम इनिशियल ब्रेकडाउन होता है, लाइक टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, गला पकड़ना या गला बैठना हम जिसको कहते हैं, गर्मी की सर्दी हम जिसको कहते हैं, कई बार इस कारण से हमें लू लग जाती है। ये टेम्परेचर डिफरेंस हमारे शरीर में अनेक प्रकार से बीमारियां पैदा कर सकता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार थे, वो साफ मना करते थे, मम्मी इवन आप लोग की चिल्लाती होगी कि बेटा एकदम से धूप से आए तो पानी मत पियो। हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि बैठ जाओ, और राजस्थान में आप देखेंगे आज भी कोई जाता है उसको बिठाते हैं और उसके बाद वो सादा पानी नहीं नॉर्मल छाछ देते हैं। उसका कारण ये कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है पसीने में, और एकदम से ठंडा पानी हम जब पीते हैं तो अनेक टेक्निकल रीजंस रहते हैं जिससे फिर टॉन्सिल्स पकड़ता है या गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाती है। तो बेहतर ही होगा कि आप 2-4-5 मिनट रुकें और उसके बाद आराम से पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तो वैसे भी मना होता है, एसी में भी धीमे धीमे टेम्परेचर आप कम करें, जरूरत नहीं होती। वैसे अगर आप नॉर्मल 24 का रखें तो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है वो। और पानी के अलावा भी, बहुत ज्यादा पानी के अलावा, आप छाछ लस्सी कैरी पना जूस इन चीजों को पियेंगे ना, तो बिल्कुल लू नहीं लगेगी। शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट खत्म निकले हैं आपके पसीने में, सोडियम पोटेशियम, ये सब आप इन जो पेय पदार्थ मैंने आपको बताया, छाछ लस्सी कैरी बना, इससे वो इलेक्ट्रोलाइट्स की आपूर्ति होती है, तो हमारा शरीर वापस तरोताजा हो जाता है और ऊर्जा से भरपूर सरोबार हो जाता है।
1: अच्छा सर, वैसे गर्मी का सीधा कनेक्शन तेज धूप से, उमस, धूल वाली हवा और संक्रमण से रहता है। इस मौसम

0: में टाइफाइड होती है, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीजेस जैसे घमौरी हो गए और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इनसे बचने के लिए हम क्या सावधानी रख सकते हैं?
1: बहुत बढ़िया, क्योंकि गर्मी अपने साथ अकेले लू नहीं, अनेक प्रकार की बीमारियां भी लेकर आती है। गर्मी में पानी कम होने से गंदगी बढ़ जाती है, गंदगी बढ़ने से मक्खियां बढ़ने से टाइफाइड जैसे रोग होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी साफ सफाई, जो सफाई अभियान सरकार चला रही है, हमें उस पर पूरा सहयोग देना चाहिए, कहीं भी कूड़ा करकट जमा ना रहे। प्लस सबसे बड़ी हमारी सावधानी कि हम मक्खियों को दूर रखें, साफ सफाई पूरी रखें, जिस भोजन पे मक्खी बैठी हो वो भोजन बिल्कुल ना ले, फलों को अच्छे से धोकर ही हमें सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम टाइफाइड से बच सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी बात कि हम घमौरियाँ, और सबसे बड़ी बात पसीने में हमें फंगल इन्फेक्शन। पिछले कुछ सालों में हमने ये पाया है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं गर्मी में। इसके दो तीन कुछ मूल कारण है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग रीजन है आपको लगेगा। एक, पहले के जमाने में हमने देखा था हमारे दादाजी वगैरह धोती या पैजामा पहनते थे, जिससे हमारे पूरे शरीर के हिस्से में अच्छे से हवा मिलती थी। अब आजकल की युवा पीढ़ी क्या पहनती है? जीन्स। जीन्स में बहुत ज्यादा एयर लॉक होती है, हवा मिल नहीं पाती है प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपरली, हम लोग की स्किन को ब्रीदिंग नहीं मिलती है, तो पसीना जमा होता है। पसीना, गर्मी और क्लम्स, क्लम्स इनकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी वहाँ फंगस डेवलप होता है और ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो बेहतर क्या है, हम एक तो कपड़े कॉटन के, सूती हल्के कपड़े पहने, अगर जीन्स ही पहन रहे हैं तो हम अच्छे से, अनेक प्रकार के पाउडर मौजूद हैं, नहाने के बाद हम बढ़िया पाउडर लगा के रखें, जिससे कि उससे वहाँ पसीना ना आ सके। पसीना नहीं आएगा तो फंगस डेवलप नहीं होगा, फंगस डेवलप नहीं होगा तो इस प्रकार की बीमारियों से आप बचोगे। और मार्केट में अनेक प्रकार के ठंडे पाउडर हैं, उनको हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हम इस पसीने भरी धूप से, स्किन डिजीज से बच सकते हैं। सावधानी रखेंगे, साफ सफाई से रहेंगे तो टाइफाइड से बचेंगे। बाहर का खाना, अब आजकल तो ट्रेंड बन गया है बाहर खाने का, तो थोड़ा बचना चाहिए बाहर का खाने से, इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह की संभावना गर्मी में बढ़ जाती है,
0: अवॉइड करना
1: अवॉइड
0: चाहिए।
1: करना चाहिए। और जहां तक हो सके, मेरा सभी मित्रों से ये आग्रह रहेगा कि पानी घर से लेके चलें आप लोग। गर्मी में हमें पता नहीं कहाँ कैसा पानी है, पानी में संक्रमण कितना ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि पानी घर से लेके चलें, साफ सुथरा पानी पिएं, तो आप फूड पॉइजनिंग जैसी चीजों से बहुत आसानी से बच पाएंगे।
0: अच्छा सर, वैसे आज से नौतपा भी चालू हो गया है, इसके लिए आप क्या लोगों को क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे?
1: बहुत भयानक गर्मी पड़ने वाली है, सुपर एलिनो आने वाला है, तो मेरा सभी को ये सलाह रहेगी कि किसी भी स्थिति में आप दोपहर को निकलने के लिए अवॉइड करें, कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 आप घर से ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो सर को जरूर ढककर निकलें, घर से खूब पानी पीकर निकलें, साथ में पानी का बॉटल लेके निकलें। इसके अलावा छाया में रहें, आप अच्छे से ध्यान रखें कि आपको धूप से बचना है, छाता छतरी आपके पास होना चाहिए धूप से बचने के लिए, या फिर किसी छाया में खड़े रहें। बहुत ज़्यादा गर्म भोजन जो रहता है, जिस पर जिसमें गुड़ वगैरह रहता है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बादी या गर्म चीज़ें रहती हैं वो हमारे शरीर को और ज़्यादा एसिड प्रोवाइड करती हैं। बहुत ज़्यादा तेल वगैरह का ना खाएं, बचें पूड़ी पराठा वगैरह खाने से, सादा जीवन, और बहुत भारी कपड़े ना पहने, बिल्कुल सूती
0: हल्के
1: के
0: कॉटन के,
1: हल्के और सादे नॉर्मल हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे तो धूप रिफ्लेक्ट होती है, ये जरूर ध्यान रखें। पूरा चेहरा ढक के निकलें, इससे स्किन बर्न भी नहीं होता। इतनी गर्मी में अल्ट्रावायलेट रेज रहती है ना, हमारी चमड़ियों को जला देती है, तो कोशिश करें कि हम पूरा ढक के अपने आप को निकलें, और अवॉइड करें निकलना तो ज़्यादा बेहतर है।
0: आपने इस प्रोग्राम के जरिए हमारे श्रोताओं को गर्मी से बचने और सुरक्षित रहने के लिए बहुत जरूरी टिप्स दिए हैं। उम्मीद करते हैं सर आगे भी आपसे ऐसी मुलाकात जारी रहेगी। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गर्मी से बचने के लिए कुछ जरूरी बातें। अब सुनते हैं फिल्म मैं हूं ना का ये सुपरहिट सॉन्ग, जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने।

0: तुझसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।
1: इस संतरे के बाद अब चलते हैं मनीमंत्र की ओर। दोस्तों, आम आदमी के लिए बजट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी बजट से किसी भी परिवार का साल भर का खर्च तय होता है। बजट जितना देश की सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आम आदमी के लिए भी होता है। किसी भी परिवार का बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी रोजमर्रा के खर्चों का पता चल सके। हर साल पेश होने वाले बजट में सरकार उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करती है जो रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। बजट बनाने का सबसे जरूरी उद्देश्य यह है कि अलग अलग सेक्टर्स को दिया गया फंड वहां पहुंचे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे पता चलता है कि पब्लिक को टैक्स में कहां राहत मिल रही है और कहां बोझ ढोना पड़ रहा है। अब बात आती है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक गंभीर विषय है। ऐसी स्थिति में बजट सरकार के लिए एक ऐसा अवसर होता है जो हमारे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादातर परिवार पैसों का मैनेजमेंट एक ही तरीके से करते हैं। सैलरी आती है, बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं और भी बहुत कुछ होता है। जो कुछ बचते हैं वो भी ये खर्च कर डालते हैं। इसी के चलते महीना खत्म होता है और हमें पता ही नहीं लगता कि पैसा कब आया और कब गया। दोस्तों, ये दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत है तो सही प्लानिंग की। फैमिली बजट बनाना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पहले से तय करना होता है कि हमारी इनकम कहाँ कितनी खर्च होगी। इसका मतलब पाबंदी लगाना नहीं है। बजट हर महीने 3 सवालों के जवाब देता है, कितना पैसा आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, और तीसरा सवाल यह है कि क्या ये पैसा ऐसी जगह बांटा जा रहा है जहाँ से हमारा मकसद पूरा हो रहा हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियली मजबूत बन रहे हैं। जो परिवार हर महीने अपना बजट बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वे ज़्यादा कमा रहे हैं, वो बस अपने खर्चों पर कंट्रोल कर रहे हैं और जानबूझकर उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो उनके लिए मायने रखती है। दोस्तों, बजट के बिना ज़्यादातर लोग अपने खर्च किए गए पैसों को मन से ही अनुमान लगा लेते हैं। इन्हें अपने खर्चों का एक मोटा मोटा अंदाज होता ही है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो आपको बजट बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें आपको हर छोटे से लेकर बड़े खर्चों का पता लग सकता है। यही बजट आपको बताएगा कि यदि आप महीने का 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपकी इनकम कहीं ना कहीं 50,000 रुपये रहनी चाहिए। अब इस चीज पर आपको ध्यान देना है कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। अब बात करते हैं 50, 30 और 20 के कारगर बजट फार्मूला की। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्ट्रक्चर है किसी भी आम परिवार के लिए, जिसमें आप अपनी सैलरी को कुछ इस प्रकार बांट सकते हैं। आपकी 50% इनकम जरूरी खर्चे जैसे हाउस रेंट या होम लोन, किराना, स्कूल फीस, बिजली बिल, बीमा जैसी चीजों पर खर्च कर सके। फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने, छुट्टियां मनाने और एंटरटेनमेंट के लिए 30% इनकम निकाल दीजिए, और बाकी के जो बचे 20% इनकम है उसको आप इन्वेस्टमेंट, SIP या फिर सेविंग्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, बातों का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। जाते जाते सुनते हैं जोश ब्रार की आवाज में बागी फिल्म का ये अल्फाज।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए जानते हैं आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के बैतूल केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर सुनिएगा शोभा गुल्टू के गाए भजन। कार्यक्रम होगा गोधुली। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम हम सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन और कव्वाली का सम्मिलित स्वरूप कार्यक्रम सबरस आप तक पहुँचेगा शाम 6:50 पर।

सामूहिक चर्चा के साथ शुरू होगा हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा खेत और घर की रखवाली के लिए स्वान भी रखें, और सामूहिक कृषि चर्चा होगी लहसुन भारतीय मसालों में प्रमुख तत्व। इस विषय पर श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा बातें खेती किसानी की। साथ ही कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, सुनेंगे लोक संगीत, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। रात्रि 8 बजे हम सुनवाएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारा बैतूल, ये कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:25 पर। इस पर सुनिएगा बैतूल जिले के पर्यावरण विषय पर डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक जंतु विज्ञान से सुमन चटर्जी की बातचीत। रात 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत हम सुनवाएंगे रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत सुनिएगा रात 10:30 बजे। और आइए जानते हैं हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर हम सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम चिंतन का समय होगा सुबह 6:30 पर। कल सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। स्वर होगा उत्तरा केलकर, श्रीकांत पारगांवकर और साथियों का। कोहिनूर लंगा और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंजनी में कल सुबह 6:45 पर। कल सुबह 7:20 पर हम सुनवाएंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। सुबह सवेरे जनोपयोगी जानकारी पर आधारित इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:50 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। सखियों का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत हम सुनवाएंगे कल सुबह 10:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा खेलों में महिलाओं की भागीदारी। सेहत की पोटली में जानिएगा महिलाओं के लिए संतुलित आहार के बारे में, और अगले क्रम के आकर्षण के साथ ही सुनिएगा सखियों के पसंद के फिल्मी गीत। दिन में 11 बजे से शाम 5:30 तक आप आनंद लेंगे विविध रंगी कार्यक्रमों का विविध भारती मुंबई से। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम सुनवाएंगे कल शाम 5:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा प्राथमिक उपचार की जानकारी रखें। स्तंभ के अंतर्गत जानिएगा अजब गजब दुनिया के बारे में। अगले क्रम के आकर्षण के साथ ही होंगे कुछ फिल्मी गीत। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा कल शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। गैर फिल्मी गीत, गजल भजन और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे कल शाम 6:50 पर। सामूहिक चर्चा के साथ शुरू होगा हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी कल शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा खेत जमीन मकान से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। सामूहिक कृषि कार्य में सुनिएगा बकरी पालन के फायदे। श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा बातें खेती किसानी की। साथ ही कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, सुनेंगे लोक संगीत, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र माधुरी हम सुनवाएंगे कल रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 पर होगा कार्यक्रम युगल गीत। रात 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। आपकी पसंद फरमाइशी फिल्मी गीतों पर केंद्रित ये कार्यक्रम होगा कल रात 10 बजे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कल रात 10:30 बजे। राग होगा बागेश्री। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इसमें कलाकार हैं शोभा गुरटू।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इसमें गायिका हैं शोभा गुलटू।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कलाकार थी शोभा गुरटू। ये आकाशवाणी बैतूल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत आप सुनेंगे समीर का लिखा हुआ, संगीत जतिन ललित का। फिल्म का नाम है संघर्ष और इस गीत में आवाज सोनू निगम की।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल आवाजों में, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का, और फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अंतिम गीत आप सुनेंगे सईद कादरी का लिखा हुआ, संगीत अनु मलिक का, आवाज श्रेया घोषाल की और फिल्म का नाम जहर।

श्रेया घोषाल के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं गीत, गजल, भजन और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में पहले सुनिए ये गैर फिल्मी गीत, आवाज कैलाश खैर की।

सबर इस कार्यक्रम के अंत में सुनिए ये कवाली, आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की गाई इस कवाली के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। चंद लम्हों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बंधु,
2: और ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तू समझ गई ना? रिलैक्स,
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल बन जाओ।
4: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रंगुआ, ये पंखा का खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो, ये फटा है। सुन, करते करते आप पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा, और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी, उमरिया में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा, इसके लिए उन्होंने यहां सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बन सिंह अजमेरा अंझेरा अंतर सिंह और अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
7: तो माँ वाघ देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर।
6: कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण एवं सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। सीहोर के रहेटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर जिला स्तरीय संरक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं नीमच, कटनी, खंडवा, खरगोन, अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, श्योपुर और रायसेन में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।

0: इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं का जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी पुस्तक अपनापन का विमोचन कल किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों को साझा किया है। इसका विमोचन कल नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा करेंगे।
2: ये पुस्तक केवल खिंचवाओं का बढ़ने वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति सर आदरणीय देवगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सुब्रमण्यम हाल निशाना करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार से स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब रुख करते हैं मौसम का। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतपा की शुरुआत के पहले ही दिन नर्मदापुरम में असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही तेज और तीखी धूप रही। भोपाल, विदिशा और सीहोर में भी गर्मी से लोग परेशान दिखे। उधर उमरिया जिले में नौतपा की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज से हुई। नौतपा के पहले ही दिन जिले में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में 40 करोड़ की लागत से 3 डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण किया जाएगा। कट्टी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। जिला जेल अशोकनगर में आज बंदियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज श्योपुर में श्योपुर जिला स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अधिकारियों और विभागीय निर्माण अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ऐप के जरिए चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। 3 दिन की गिनती में 315 गिद्ध पाए गए। गुना में कलेक्टर ने आज जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकारियों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोग और भोज लोक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मना गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी।

के समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोग और भोज लोक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मना गंगा दशहरा। और नवतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुन रहे सभी किसान भाइयों और सभी श्रोताओं को छोटे लाल धुर्वे का राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज से नवतपा भी चालू हो गया है और इस समय बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में भाइयों, आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ज्यादा धूप में ना घूमें और भरी दोपहरी में जो है काम भी ना करें, जिससे कि आप अपने आप को गर्मी से बचा पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी सी चर्चा गर्मी को लेकर और आइए अब हम बात करते हैं आज के हमारे विषय को लेकर। और आज का हमारा आज की बात का विषय है खेत और घर की रखवाली के लिए श्वान यानी कुत्ते भी रखें। जी हाँ किसान भाइयों, खेत और घर की रखवाली के लिए श्वान यानी कुत्ता सबसे वफादार और सतर्क साथी होते हैं। ये ना सिर्फ हमारी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं बल्कि असामाजिक तत्वों और जंगली जानवरों को दूर रखने में भी हमारी मदद करते हैं। खेत और घर की सुरक्षा के लिए कुत्तों को पालना क्यों जरूरी है, आइए और विस्तार से हम जानते हैं इस बारे में। पहली बात तो किसान भाइयों, कुत्ते जो होते हैं यह हमारे लिए सजग पहरेदार होते हैं। कुत्तों की सूंघने और सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। ये आहट या अनजान गंध को जो है बहुत जल्दी भाप लेते हैं और किसी भी खतरे से पहले भौंककर आपको सतर्क कर देते हैं। भाइयों, खेतों में जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी बहुत सहायक होते हैं ये हमारे लिए। किसान भाइयों, खेतों में नीलगाय, सुअर, बंदर या अन्य जंगली जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। एक अच्छा कुत्ता खेत से इन जानवरों को दूर भगाने में बहुत प्रभावी होता है। और किसान भाइयों, चोर उचक्कों से भी यदि हमारे घर पर हमने कुत्ते पाल रखे हैं तो बहुत सुरक्षा हमें मिल पाती है चोर उचक्कों से। भाइयों, घर या फार्म हाउस पर जो है रात के समय होने वाली चोरी और सेंधमारी की घटनाओं को रोकने में कुत्तों की मौजूदगी सबसे बड़ा

रोधक हैं। कई बार सिर्फ कुत्ते के भौंकने से ही चोर जो है भाग जाते हैं। अकेलेपन में सुरक्षा का भाव भी इससे जो है हमें महसूस होता है। यदि आपका खेत सुनसान इलाके में है या घर में बुजुर्ग अकेले रहते हैं, तो एक वफादार कुत्ता जो है परिवार को मानसिक सुरक्षा और आत्मबल प्रदान करता है। भाइयों, वफादारी और आज्ञाकारिता भी इनमें होती है। कुत्ते जो है अपने मालिक और उनके परिवार के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। सही प्रशिक्षण मिलने पर ये घर के बच्चों और मवेशियों की भी पूरी निष्ठा से रखवाली करते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी ही चर्चा, खेत और घर की रखवाली के लिए क्यों जरूरी है श्वान यानी कुत्ते, इस विषय पर बातचीत। और अब समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं निजाम सिंह इवने और साथियों के स्वर में ये आदिवासी गोंडी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आप निजाम सिंह इवने और साथियों के स्वर में सुन रहे थे ये आदिवासी गोंडी लोकगीत। और अब किसान भाइयों, समय है आज के हमारे मेहमान से आपको मिलवाने का। तो आइए मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान से आपको। और आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम पाढ़र के कृषक श्री राजू बामने। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत।
1: किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम पाढ़र और यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके अपने कृषि कार्यों के अनुभव। तो भैया, सबसे पहले हम आपका हमारे इस कार्यक्रम किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय राम जी की।
2: जय राम जी की।
1: भैया, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम है राजू बामने। मैं पाडर बुजुर्ग का निवास करता हूँ।
1: राजू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम किसानवाणी में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है खेती बाड़ी के कामों में कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं।
2: लगभग 20-22 साल से हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हम बड़े से किसानी बेल द्वारा करते हैं, जिसमें बखर मारकर और जगह अच्छी बनाकर और जो भी बोना चाहते हैं वो बीज लगाकर अच्छा उत्पादन लेते हैं, जिसमें गोबर की खाद डालते हैं हम लोग। गोबर की खाद से उत्पादन अच्छा होता है, दाना मोटा होता है, जिसमें कोई बीमारी की क्षमता खत्म हो जाती है। और मूंग लगा लो आप या मूंगफली लगा लो, गर्मी की सब्जी लगा लो और बैंगन लगा लो और भट्टे लगा लो, करेला लगा लो,
1: जी
2: बिल्कुल आप बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा
1: जी
2: उससे।
1: जी तो इस प्रकार आप फसलें लेते हैं, मतलब खेती से।
2: जी हाँ, इसी प्रकार से हम खेती के से फसल लेते हैं,
1: जी,
2: जिसमें करेले में गड्ढे बनाकर गोबर खाद भर देते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, फिर उसमें कचरा उगता है। कचरा
1: अच्छा राजू भैया, ये जो सब्जी वाली फसलों की बात की आपने, तो किस समय में इन्हें लगाना सबसे बढ़िया होता है? वैसे इनको किस समय में लगाया जाता है, सब्जी वाली फसलें?
2: सब्जी वाली फसलें जैसे हल्की सी ठंडी कम हुई फरवरी में, फरवरी में बिल्कुल 5 से 10 फरवरी के बीच में हम तैयारी कर लेते हैं पूरी। फिर उसमें जगह बना लेते हैं, जगह बनाकर गड्ढा बनाते हैं उसमें, फिर लगभग 1-1 किलो एक एक गड्ढे में 2.5 फीट 3 फीट के लगभग में गेप रखकर और गोबर खाद लगा देते हैं।
1: मतलब 1-1 किलो गोबर खाद उस
2: एक एक
1: गड्ढे में
2: गड्ढे
1: डालते हैं।
2: डालते हैं सारा
1: गड्ढा
2: वहां,
1: कितने बाय कितने का खोद देते हैं आप?
2: गड्ढा रहता है वो 1 फीट का,
1: 1 फीट।
2: 1 फीट चौड़ाई और 1/2 फीट गहराई, जिससे वो गोबर खाद को गड़ा कर और फिर प्लेन कर कर एक लकड़ी का निशान गाड़ देते उसमें। फिर
1: ताकि हम पहचान सके कि हमने यहाँ पर गड्ढा बनाया था और
2: हाँ
1: यहाँ
2: गड्ढा बनाया
1: हमने खाद डाल रखी है गोबर की।
2: फिर उस निशान में पानी, दो पानी देते हैं, दो पानी में जो कचरा उगने का रहता है वो उग जाता है, उगने के बाद में फिर नींदा करवाते हैं।
1: कचरे को जो है उखाड़ के फेंक देते हैं।
2: हाँ, उखाड़ कर नींदा करवाते हैं। नींदा करवाने के बाद में फिर बीज को रात भर पानी में फुला कर रखते हैं, दूसरे दिन फिर उसको
1: अच्छा,
2: मिट्टी,
1: ताकि अंकुरण जो है जल्दी हो सके।
2: हाँ, फिर उसके बाद में दूसरे दिन उसमें गोबर खाद में साथ में मिलाकर फिर 3 दिन रखेंगे, फिर उसमें अंकुरण आ जाते हैं। अंकुरण आने के बाद में फिर हाथ से एक एक गड्ढे में 3 बीज या 4 बीज लगाया जाता है अंकुरण वाले, फिर वो 3 दिन में आपके बेला ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार से हम बेला का पौधा बढ़ा लेते हैं।
1: जी। अच्छा राजू भैया, बेला वाली कौन कौन सी फसलों को आप इस प्रकार लगाते हैं, जैसे गड्ढा खोद के और गोबर खाद जो है रख के, जो है कौन कौन सी बेला वाली फसलों को आप लगाते हैं, करेले के अलावा और भी?
2: जैसे कद्दू है, गिलकी है, लौकी है और ककड़ी है और तोरई है, ये जितनी भी बेला वाली फल है उतने सभी लगाए
1: अच्छा,
2: जाते
1: सभी
2: हैं।
1: को इस प्रकार बाकायदा गड्ढा खोद के

0: और गोबर खाद उसमें भर के गड्ढे में और फिर इसके बीजों को लगाया जाता है।
1: जी हाँ, इससे उत्पादन अच्छा होता है, फल भी अच्छे लगेंगे और फल भी साफ सुथरा आएंगे, कोई कीड़ा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, बेला में कोई मोजक रोग नहीं आएगा,
0: बेला
1: वो
0: भी जो है स्वस्थ रहता,
1: स्वस्थ बेला होगी, बिल्कुल स्वस्थ बेला आ गई
0: अच्छा
1: उसमें।
0: अच्छा तो उसमें जो है फल अच्छे लगते हैं, बढ़िया।
1: हाँ, फल बहुत प्यारे लगते हैं और खाने में भी बड़ा स्वाद फल आता है। और जैसे टिंडे लगाना है आपको, करेला लगाना है, भिंडी लगाना है, भिंडी भी आप ये उत्पादन से लगाओ तो एक भिंडी एक पेड़ में 1 किलो, एक ही पेड़ से भिंडी निकलेगी,
0: अच्छा, एक पेड़ से एक ही
1: एक ही किलो भिंडी
0: किलो
1: निकलेगी।
0: भिंडी निकल जाती है।
1: हाँ,
0: ये
1: पर
0: जो विधि है आपने बताई, इस विधि से भी
1: इस
0: लगाते हैं?
1: विधि से लगाएंगे तो एक पेड़ में एक ही किलो भिंडी निकलेगी, जिसका पेड़ कम से कम नहीं भी तो 1 इंच का मोटाई होगा और शाखादार पेड़ होगा, बिल्कुल ऐसा छछलेगा
0: जी।
1: जैसे पौधा, एक बिलास का पौधा है, उसको फिर कठिन कर दो आप, जब
0: अच्छा
1: कठिन
0: अच्छा
1: कर दोगे तो नीचे बहुत सारे पिकाचे आएंगे,
0: अच्छा
1: तब एक पेड़ में एक ही किलो का उत्पादन निकलता है।
0: अच्छा मान लो भिंडी का पौधा काफी हाइट होने लग गया है तो उसे क्या कटिंग करना पड़ता है
1: हाँ, कठिन
0: एक
1: जैसे
0: बार फसल तोड़ने के बाद?
1: नहीं, फसल जैसे फूल पे रहा है वैसे आप उसको कठिन मार दो।
0: अच्छा, फूल की अवस्था में?
1: हाँ, फूल की अवस्था में आप उसको कठिन मार दो। कठिन मारने से
0: कितनी
1: आपका
0: फीट की ऊंचाई पौधा होने के
1: टोटल
0: बाद?
1: एक बिल्लास
0: अच्छा,
1: जमीन से एक बिल्लास
0: एक
1: होने,
0: गिलास ही रखना है,
1: हाँ,
0: एक गिलास ऊपर से आपको कटिंग करना
1: कठिन
0: है।
1: कर देना है,
0: अच्छा, फिर उसमें पीके निकलेंगे?
1: बहुत सारे पीके निकलेंगे। अब उसको
0: अच्छा
1: कोई खाद वाद कुछ नहीं डालना है, कोई स्प्रे
0: अच्छा
1: नहीं करना है, कुछ
0: रासायनिक
1: नहीं,
0: खाद या रासायनिक
1: कुछ नहीं,
0: दवाएं
1: कुछ
0: कुछ नहीं
1: नहीं,
0: डालना है?
1: कुछ नहीं डालना है।
0: अच्छा, शुद्ध जो है जैविक तरीके
1: हाँ,
0: से इस
1: जैविक
0: प्रकार
1: तरीके से,
0: उत्पादन
1: हाँ वो
0: लेना
1: ले,
0: है?
1: हाँ लेना है तो
0: जी,
1: बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है।
0: बहुत बढ़िया विधि आपने बताई राजू भैया। तो इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई खेती करेंगे तो बहुत बढ़िया लाभदायक होगा। तो आपने इस साल बेला वाली सब्जियां कौन कौन सी लगाई है वैसे इस सीजन में?
1: इस सीजन में अभी हमने करेला लगाया हुआ है, भिंडी लगी हुई है, यही विधि में
0: जी,
1: अच्छा उत्पादन है,
0: ये दो फसलें अभी इस बार ले रहे हैं
1: ले
0: आप,
1: रहे हैं।
0: तो ये फरवरी में जो आप लगाते हैं इन्हें, तो ये कब तक फसल देना मतलब देती है ये आपको, कौन
1: ये
0: से महीने तक की? बरसात के लगते तक?
1: मानकर चलो कि बरसात के लगते तक आपको ये फल मिलते रहेगा, और इसकी और देखभाल करोगे, निंदा खोदी मिट्टी चढ़ा दोगे और थोड़ी थोड़ी गोबर खाद दे दोगे तो और लंबी चलेगी ये, और
0: अच्छा,
1: लंबी
0: और
1: चलेगी।
0: लंबे समय तक
1: हाँ,
0: चलती है
1: बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है
0: जी।
1: उत्पादन
0: तो इस
1: उस,
0: प्रकार जो है आप सब्जियों का उत्पादन लेते हैं और बढ़िया तरीके से उत्पादन लेते हैं
1: हाँ,
0: मतलब?
1: बढ़िया तरीके से उत्पादन लेते हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है, बहुत प्यारा मिलता है, और फल
0: जी
1: भी मार्केट में आप ले जाओगे तो आपकी सब्जी देखकर ही बिक जाएगी, देख
0: जी
1: आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जाकर ले जाकर बाजार लगा दो, बाजार में सामने गीले कपड़ा कर कर उस पर ढाक कर रख दो, और ग्राहक कोई आता है लेने के लिए तो गमछा उखाड़ कर बता दो, तो वो देख लेंगे कि वो भिंडी का कलर अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा,
0: जी सामने वाला देखकर ही पहचान जाएगा कि ये जैविक रूप से उत्पादित जो है
1: मतलब इसका आएगा
0: सब्जी है।
1: बिल्कुल कालापन आएगा, जैविक तरीके से अपन जो गोबर खाद में उत्पादन ले रहे हैं इसका कालापन आएगा और बिल्कुल नरम लुस रहेगी,
0: अच्छा,
1: और जो अपने यूरिया डीएपी वाली जो भिंडी बरबटी करेला रहेगा वो पीलापन रहेगा।
0: अच्छा, और कड़क रहती है वो?
1: हाँ नहीं, कड़क तो रहेगा ही रहेगा, पर पीलापन रहेगा,
0: पीलापन रहेगा
1: पीलापन रहेगा,
0: जी।
1: पीला आएगा
0: अच्छा,
1: बिल्कुल।
0: और ये जो जैविक तरीके से उत्पादित हमारी भिंडी हो या करेले
1: बरबटी
0: हो, ये
1: हो या
0: बिल्कुल काला इसका कलर आएगा?
1: काला कलर आएगा,
0: अच्छा
1: बिल्कुल काला
0: अच्छा
1: कलर रहेगा और
0: अच्छा
1: हरा कच दिखेगा बिल्कुल,
0: तो
1: मतलब सब्जी में जितनी सफाई दिखेगी कि आप कहोगे कि इसमें कोई कलर का स्प्रे किया है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा,
0: जबकि उसमें कोई रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं
1: नहीं
0: रहता है।
1: नहीं रहता है।
0: तो आपके यहाँ सब्जियां उगा रहे हैं तो आप स्वयं बाजार बैठते होंगे बेचने के लिए?
1: हाँ, सेम जाते हैं बाजार, सेम जाते
0: जी
1: हैं हम बाजार बेचने के
0: अच्छा
1: लिए, ये मानकर चलो कि गुरुवार के दिन 2 बोरा भिंडी ले जाएंगे हम
0: अच्छा बैतूल
1: बैतूल,
0: अच्छा
1: और गुरुवार के दिन 1 बोरा करेला लेकर जाएंगे, फिर इतवार के दिन 1 बोरा करेला और 2 2.5 बोरी भिंडी लेकर जाएंगे, शाम को 6 सवेरे 8 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे वापस हो जाएंगे बेचकर, और सबसे अच्छा रेट से बेचेंगे, 10 रुपए पाव, 40 रुपए किलो।
0: क्योंकि आप जो है शुद्ध तरीके से जैविक तरीके से उत्पादन कर रहे हैं सब्जियों का, चाहे भिंडी हो या और अन्य सब्जियां, तो आपकी जो सब्जियां उन्हें बिकने में समय ही नहीं लगता है।
1: समय नहीं लगता, ग्राहक को ये मालूम है कि भाई ये सब्जी खाने से टेस्ट आता है, टेस्टी है, इसलिए वो अपने पास ही दौड़ लगाएंगे।
0: जी। अच्छा भैया, बहुत से किसान भाई रासायनिक खाद हो या रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जियों की बात करें या फसलों में, तो रासायनिक दवाओं से आप क्या मानते हैं, नुकसान है या फायदा है इनका इस्तेमाल हमारी फसलों में करने से?
1: अपन यूरिया डीएपी डालते हैं, इससे नुकसान ही है,
0: जी, ये जो यूरिया डीएपी, इससे नुकसान है?
1: इससे नुकसान है, इससे क्यों
0: और
1: नुकसान है कि इसमें हर प्रकार की बीमारी का उत्पादन हो जाता है, अने ये मानकर चलो कि आपको कल फसल बेचना है, आपके आपने भिंडी लगा दी, करेला लगा दिए, गिलकी लगा दी, तुरई लगा दी या कद्दू लगा दिया, अब उसमें इल्ली का आकार

0: गया, इल्ली खाने लग गई, तो आप उसमें क्या करोगे? हाथ से तो मार नहीं सकते हो,
1: जी
0: दवाई का स्प्रे करोगे। जब दवाई का स्प्रे आपने कर दिया और आपको कल मार्केट ले जाना है, तो आप उतनी सारी फसल को ले जाकर धो नहीं सकते हो। आप ले जाकर डायरेक्ट क्या करोगे, तोड़ने के बाद में मंडी लगाओगे या बाजार लगाओगे। तो अब ग्राहक सामने वाला आया, वो तो ले जाएगा और खरीदेगा, फ्रिज में ले जाकर रखा, अब उनने वहां से फ्रिज में रखने से वो उसमें अंश ज्यादा अंदर घुस गया। जब ज्यादा अंदर घुस गया तो अब उसको अपन ने फ्रिज में से निकाला और धोया और काट लिया। वो काट लिया, काटने के बाद में क्या होता है कि वो उससे जबकि मटेरियल अंदर पहुंच गया है सब्जी के अंदर, अब वो धोने से तो निकलना नहीं है। अब जब नहीं निकला तो अपन ने खाया तो 25% तो अपने शरीर में आएगा वो केमिकल। जब वो केमिकल आएगा तो इसमें बीमारी इतनी प्रकार की पैदा होगी कि आपको कभी हार्ट अटैक भी आ जाएगा, आपको ब्लड कैंसर भी होगा, कैंसर भी होगा, मुंह में छाले भी आएंगे और आंख में भी कम दिखाई देगा। आप कितने ही अच्छा खाओगे आपके चेहरा पे रौनक भी नहीं रहेगी। तो ये सब प्रकार की बीमारी का उत्पादन होता है केमिकल से।
1: ये केमिकल युक्त दवाएं बोलो या रासायनिक, ये जो यूरिया डीएपी खाद, इनका इस्तेमाल हम ना ही करें तो अच्छा है?
0: करो, अपन बिल्कुल नहीं के बराबर करो।
1: जी।
0: मतलब आपको जैसे 100% लग रही है तो आप 10% यूज करो, और 10% कब करना है कि आपने आज फसल तोड़ी और आज ही आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आपको फसल कल ले जाना है और हम आज डाल कर ले जाएं, जिससे अपने जो इस ग्राहक है उन्हीं को दिक्कत आएगी बात।
1: तो अपने ग्राहकों को भी नुकसान ना हो,
0: इसमें ग्राहकों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, खाने में भी स्वाद आना चाहिए, तो आपकी ग्राहकी भी बनी रहेगी और माल भी बिकेगा और आपका माल ही खराब रहेगा। एक बार ग्राहक आएगा और ले जाएगा तो दूसरी बार कौन सा ग्राहक आएगा? नहीं आएगा, नहीं बिकेगा। तो मार्केट में ऐसी चीज रखो कि जिसमें उनको भी नुकसान ना हो ना अपन को भी ना हो।
1: तो हम आए दिन इस समय ये जो केमिकल वाले दवाओं का इस्तेमाल किया हुआ, चाहे अनाज की बात करें या सब्जियां, इनका इस्तेमाल करते हैं हमारे भोजन में, तो आए दिन बीमार हम अधिक पड़ रहे हैं और कई प्रकार की बीमारियां आ रही। तो हमारे खाने के लिए यदि हम गोबर खाद से ही खाने लायक का जो है अनाज हो या सब्जियां हो, गोबर खाद से ही उत्पादन करें, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया फायदे की बात।
0: देखो, अपने आप में अपन को कभी अनाज का भी उत्पादन लेना तो आप गोबर खाद को गड्ढा खोद कर सड़ा लो, उसी का स्प्रे मारो, आप उसी को खेत में डालो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। आपको गेहूं में 90% केमिकल जा रहा है
1: इस समय
0: 90% गेहूं में केमिकल जा रहा
1: है। किसान भाई जो है इस समय केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं,
0: ज्यादा कर रहा है। इसका कारण है कि आप बीमार पड़ गए हो। आपको कभी दवाई से नहलाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे? नहीं होंगे। नहलाने से आपको ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर जब तक सूजी नहीं देगा, जब तक गोली नहीं लिखेगा और वो गोली नहीं खाओगे, आपको आराम नहीं लगना। तो आपके शरीर में केमिकल जाएगा तभी तो आप वैसे ही। अपन जब गेहूं के लिए खाद डाल रहे हैं, केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, कचरा मार सपाया, जबकि वो पौधा को सुखा रहा है, तो क्या अंश गेहूं में नहीं जा रहा? पौधे में, उस पौधे से ही गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन हो रहा है तो उसमें केमिकल नहीं गया? गया केमिकल, शुरू से आखिरी तक केमिकल गया उसमें। जब वो केमिकल गया, वो पककर सूख गया, सूखने के बाद में आप पिसा कर खाओगे तो उसमें 25% केमिकल खा रहे हो आप। जो अपना मार्केट में जो चावल आ रहा है, जैसे अपन बोलते पूसा बासमती, उषा बासमती, 11-21 चैंपियन, जो चावल होता है ये सैंपल चावल नहीं है। चावल होता है सैंपल किसान के पास का, किसान ने चक्की से धरा कर लाया और वो घर पर रखा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। जो मार्केट में चावल मिल रहा है पूरा केमिकल का चावल है। आप उसमें सेंटेड पाउडर मिलाते हैं बड़े बड़े मिल वाले, नहीं तो हमारे साथ चलो, हम आपको सिद्ध कर दिखाएंगे। इटारसी, होशंगाबाद, बावाई, जितनी
1: हम तो ये सोचते हैं कि ये ओरिजिनल चावल है और इसका जो सेंट है ओरिजिनल है, लेकिन आप एक नई बात बता रहे हैं कि इसमें सेंटेड पाउडर मिला जाता है, तो ये बिल्कुल नई बात बताया आपने।
0: ये सेंटेड
1: सही बात है, मतलब
0: सेंटेड पाउडर मिलाते हैं और आप उसी चावल को घर पे लाना और उसको धो लेना और फिर एक बार धो लेना और धो कर उसको फिर से बनाना और एक किसान के पास से मार्केट से चावल ले जाना। जो लेडीज चावल कोठी बाजार सदर में बेचने जाते हैं,
1: जो किसान घरों से जो बाइयां आती है बेचने के लिए, उन महिलाओं से भी हम चावल खरीद के ले जाए, उनकी तुलना और वो जो दुकानों से लाते हैं उससे तुलना की जाए तो अंतर है, मतलब
0: बहुत अंतर आएगा, 75% का अंतर आएगा। जबकि ये भी चावल दो पानी से धोना, वो भी दो से धोना है, पर टेस्ट ये आएगा किसान के पास का आएगा। जो बाइयां बेचने ले जाती है वो चावल में सेंटेड भी आएगा और टेस्ट भी आएगा, खाने में स्वाद भी लगेगा और वो फीका लगेगा। वो फीका इसलिए लगेगा कि उसमें केमिकल है, सेंटेड केमिकल है, इसलिए वो चावल से भी केमिकल अपन खाते हैं। और जैसे बड़े बड़े लोगों की शादी होती है, शादी में क्या बताते हैं, बोले यार अच्छा बासमती चावल लाना,
1: अब
0: वो किराने से, तो वो सब वो दिखावा है, कोई चावल सेंटेड नहीं है, ये सब विदेश का पाउडर है, इस पाउडर को खला कर

0: निकलते हर बीमारी का उत्पादन है।
1: तो इस प्रकार जो है अनाजों में भी बहुत से प्रकार की मिलावटें होती है और एक बीमारियां भी इससे काफी कुछ जो है इसे होती है।
0: और बीमारियां बहुत ज्यादा उत्पादन होती है, और ये चावल खाने से चावल हजम भी नहीं होता, पेट में गैस बनती, प्रकार प्रकार की गैसें आती, किसी का पेट फूल जाना, किसी को बहुत ज्यादा पदार आना, तो ये चावल में केमिकल होने से ही आता है। जैसे आपको तुअर की दाल खाना है, तुअर की दाल आप जितनी मार्केट की खाओगे आपको गैस बनेगी, और उसको गैस बनने का कारण एक ये कि उसको जब आप मार्केट से आप लेकर आओगे दाल, दाल को लाने के बाद में उसको आप धोना, धोने के बाद में दाल में फेस बनेगा, वो फेस जब आया तो समझ जाओगे ये केमिकल है। और आप किसान के पास की तुअर की दाल लेना, फोकले वाली, फोकले वाली दाल में एक ही शिकायत आएगी, केवल कुकर फटने का चांस रहता है, उसमें कोई फेस नहीं बनेगा। और वो जो मार्केट की तुअर की दाल है उसमें पूरे में फेस आएगी, और वो फेस के कारण ही 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर में गलेगी। किसान के पास की दाल 5 मिनट 10 मिनट में कुकर में कभी नहीं गलेगी,
1: वो समय लेती है,
0: केमिकल नहीं है ना उसमें, उसमें केमिकल होता तो बहुत जल्दी गलती, फेस आता उसमें।
1: बहुत कुछ अनुभव आपने बताई राजू भैया, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप खेती में वैसे सब्जियां लेते हैं बताया, लेकिन इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, तो इस गर्मी के सीजन में कुछ और भी अन्य फसलें लगाए होंगे आपने इस समय?
0: इस समय अन्य फसल में हमने बहुत सी चीजें लगाई है, जैसे अभी मूंग लगाई हुई है।
1: अच्छा।
0: मूंग के अलावा में थोड़े से कद्दू भी लगे हुए हैं।
1: जी जी। और मूंगफली बता रहे थे आप?
0: और मूंगफली भी है।
1: अच्छा।
0: मूंगफली तो बहुत है, लगभग 3-4 एकड़ में मूंगफली है।
1: जी जी। तो मूंगफली आप किस समय में बोए हैं ये मूंग और मूंगफली?
0: ये मूंगफली लगभग 5वां महीना चल रहा है, उखड़ चालू हो गई, उखड़नी चालू हो गई,
1: टुड़ाई चालू हो गया।
0: हाँ, टुड़ाई चालू हो गई।
1: तो आपने मतलब जनवरी के समय ही लगाया?
0: जनवरी के 5-7 दिन पहले लगी हुई है,
1: मतलब दिसंबर आखिरी में।
0: हाँ, दिसंबर आखिरी में लगा हुआ, 25-26 को लगी दिसंबर।
1: और इसे कैसे, बैलों के द्वारा हल से बोए हैं या फिर सीड ड्रिल से आपने?
0: नहीं, इसको तो अपन ने हल बखर से जगह बनाई, जैसे बैल द्वारा जगह बना ली, और जगह बनाकर उसमें हमने पानी पलेवा किया दो।
1: अच्छा।
0: पलेवा करने के बाद में फिर रस्सी तान कर एक एक दाने लगाए जाते हैं।
1: अच्छा, हाथों से?
0: हाथों से दाने लगाए जाते हैं,
1: एक एक दाने।
0: हाँ, जिसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता
1: है। ये आप पहली बार लगाए हैं मूंगफली की फसल इस सीजन में या फिर पहले से करते आ रहे हैं?
0: पहले से, बहुत पहले से ही करते आ रहा हूँ, यही उन्नति से।
1: अच्छा, इस उन्नति से, इस तरीके से, मतलब?
0: हाँ,
1: इस विधि से,
0: इस विधि से लगाने से कारण यही है कि इस विधि में आपको 1.5 फीट की चौड़ाई रखना है, और आपको लंबाई 150 फीट, 200 फीट, 250 फीट की लंबाई की रस्सी बना लो, फूटा टांग दो उधर से इधर, और उसमें फिर मात्र 6 इंच के गैप में दाने लगाते चले जाओ, 6-6 इंच के गैप में।
1: 6-6 इंच के गैप में आपको बीज लगाना है?
0: बीज लगाना है।
1: अच्छा, ज्यादा दूरी नहीं रखना है इसमें?
0: बिल्कुल 6 इंच के गैप में लगाना है।
1: अच्छा।
0: और सीधे लाइन बाय लाइन लगाना है
1: जी।
0: उसके बाद में फिर आपको एक लकड़ी में गड्ढा करते हुए चले जाना है लगाते हुए, उसके बाद जैसा पौधा तैयार हो जाता है तो फिर उसमें डालना है सुपर फास्फेट दाना वाली, और उठाकर फिर डोरा चला देना, और डोरा चलाने के बाद में फिर फावड़ा से जैसे हालू में अपन मिट्टी चढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: उस प्रकार से मिट्टी चढ़ाना पड़ता है,
1: बढ़िया फावड़े से मिट्टी चढ़ाओ।
0: हाँ, बहुत अच्छा उत्पादन होता है।
1: अच्छा, उसमें जो डेवरा तास होता है बीच में यदि हम हल चला दे तो हल चलाने से मिट्टी उतने अच्छे से नहीं चढ़ पाएगी होगी?
0: नहीं, हल चलाने से मिट्टी चढ़ती है पर उतना नहीं,
1: इतने अच्छे तरीके से नहीं चढ़ पाएगी।
0: नहीं चढ़ पाएगी जी। अच्छा। बिल्कुल सेम आलू की मिट्टी चढ़ाना और इसकी मिट्टी चढ़ाना सेम है।
1: अच्छा, मतलब फावड़े से सेम।
0: हाँ, सेम। ये विधि से काम कर लिया तो बहुत अच्छा लाभ होगा।
1: तो आपने इस बार लगभग 3-4 एकड़ में लगाए हैं?
0: हाँ जी।
1: मूंगफली
0: जी,
1: तो बढ़िया उत्पादन मिलता है?
0: बढ़िया मिल रहा है।
1: मूंग कितने रकबे में आपने बोई है इस बार?
0: मूंग तो थोड़ा सा ही होगा, लगभग 5-1 एकड़ में होगी,
1: फिर भी काफी रकबे में आपने बोई है। तो मूंग फसल कैसी है वैसे इस बार भैया?
0: मूंग की फसल तो बहुत अच्छी।
1: अच्छा, वो भी अच्छी है?
0: बहुत अच्छी है
1: जी जी। कोई रोग या कीट वगैरह दिखने में आ रहा होगा इसमें? नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहा
1: जी, जी।
0: हम लोग इसलिए नहीं आएगा उसमें कि हमने जो स्प्रे मारा है, पौधों की नहीं आता, ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई पीलापन आएगा, ना मौजाक आएगा, कुछ नहीं आएगा।
1: कौन सी? देसी?
0: देसी दारू। एक 18 लीटर की टंकी में आपको टोटल 1 गिलास डालना है।
1: इससे जो है कोई रोग बीमारियां नहीं आती?
0: हाँ, इससे कोई बीमारी का उत्पादन ही नहीं होगा, ना इल्ली होगी ना बीमारी होगी।
1: मतलब आप छिड़काव भी जो है ये जो केमिकल वाली दवाइयां हैं इसका नहीं करते हैं?
0: नहीं करते।
1: मतलब जो देसी दवाई होती है उसका ही छिड़काव करते हैं?
0: बस देसी दवाई का।
1: मतलब आप ज्यादातर जो है केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते?
0: नहीं करते केमिकल का, नहीं, बिल्कुल नहीं करते केमिकल का।
1: और आने वाला जो बरसात का सीजन है उसमें आप इस बार जो है कौन कौन सी फसलें बोने वाले हैं?
0: इस बार हम लगाएंगे थोड़ी सी धान लगा लेते हैं, लगभग 20 किलो। फिर उसमें बाद में सोया

0: लगा लेते हैं,
1: जी
0: सोयाबीन के बाद में फिर मक्का लगा लेते हैं। वह
1: अच्छा
0: तीन
1: अच्छा
0: फसल का उत्पादन बरसात के समय में लेते हैं।
1: तो खेतों की तैयारियां भी चल रही होगी आपकी आगामी फसलों के लिए?
0: खेत की तैयारी वैसी हो गई है, बखर लगा लिए अपन ने दो दो बार अभी।
1: क्योंकि इस समय धूप के समय में यदि बखर लग जाए तो खेत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है, ऐसा हमारे बुजुर्गों का कहना है। तो ये बिल्कुल सही बात है भैया।
0: बखर लगाने से क्या है कि जो चारा होता है वो पलट जाता है, पलटने से वो मोड़ हो जाता है, मतलब
1: अच्छा
0: खत्म हो जाता है, उसकी
1: जी
0: जो उम्र ही खत्म हो जाती है, खत्म
1: जी
0: पूरा सूख जाएगा।
1: जी जी
0: और जो दूसरा उगने का रहेगा तो फिर दूसरी बार लगा दो,
1: जी
0: दूसरी बार फिर उठाकर फिर मर गया, फिर इक्का दुक्का दिखेगा तो फिर लगा दो, तीन बार मार दो, आप पूरा कचरा साफ हो जाएगा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया कि आपने आपके कृषि कार्यों का अनुभव हमारे साथ साझा किए और इतनी अच्छी जानकारी दी आपने खेती बाड़ी के बारे में हमारे किसान भाइयों को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।
0: जय राम जी की।
2: किसान भाइयों, अभी आप ग्राम पाडर के कृषक श्री राजू बामने से की गई बातचीत सुन रहे थे और अब समय है यहाँ पर एक और लोकगीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं सुखदेव गुजरे और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। और अब किसान भाइयों, समय है आज के हमारे कृषि चर्चा का। और आज के हमारा कृषि चर्चा का विषय है लहसुन भारतीय मसालों में प्रमुख तत्व। किसान भाइयों, भारतीय मसालों में लहसुन ना सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने वाला घटक है, बल्कि यह अपने औषधीय गुणों और रासायनिक संरचना के कारण एक प्रमुख तत्व माना जाता है। भारतीय रसोई में इसे प्याज के साथ मिलाकर मसाला बेस तैयार करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाइयों, भारतीय मसालों में लहसुन का क्या महत्व है, इस बारे में हम जानते हैं। लहसुन को भारतीय व्यंजनों और मसालों का प्रमुख स्तंभ बनाने वाले मुख्य कारण है, जिसमें इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला जो है एलिशिन की उपस्थिति इसमें होती है। भाइयों, लहसुन में सल्फर से भरपूर यौगिक होते हैं। जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो एलिन नामक एंजाइम एलिशिन में बदल जाता है। यही तत्व लहसुन को उसकी विशिष्ट तीखी महक और स्वाद प्रदान करता है। भाइयों, इसमें प्राकृतिक गाढ़ापन भी पाया जाता है। लहसुन को मसालों के साथ जो है पीसकर इस्तेमाल करने पर यह ग्रेवी या शोरबे को गाढ़ापन और बेहतरीन बनावट देता है। भाइयों, लहसुन में विटामिन सी, B6, मैग्नीज और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई संक्रमणों से बचाता है। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी ही चर्चा लहसुन के बारे में। और अब समय है यहाँ पर एक और लोकगीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे निजाम सिंह इवने और साथियों के स्वर में ये आदिवासी गोंडी लोकगीत। और अब किसान भाइयों, समय हो गया है आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति छोटेलाल धुर्वे को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ बातें।

कुछ गीत। इस कार्यक्रम में पहला गाना अजीज कैसी का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम है दयावान।

कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनेंगे समीर का लिखा हुआ, संगीत नदीम श्रवण का है, आवाज अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता जी की आवाज में आपके साथ इस फिल्म का गाना। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में। बोल एसएच बिहारी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आप आकाशवाणी बैतूल सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारा बैतूल। इसमें आज का विषय है बैतूल जिले के पर्यावरण विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा से सुमन चटर्जी की बातचीत।
1: हमारा बैतूल
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया ये दिवस प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता को नुकसान जैसे गंभीर मुद्दों पर हमें उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। रही बात हमारे बैतूल जिले की, तो हमारा ये जिला शुरू से ही पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध रहा है। अंग्रेजों के जमाने में यानी आजादी से पहले हमारे जिले का क्षेत्र एक समृद्ध शिकारगाह माना जाता था और आज भी हमारे जिले की सुरम्य वादियाँ अपनी हरी भरी पहाड़ियों, झरनों और प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आज के प्रोग्राम हमारा बैतूल में जानते हैं वर्तमान में बैतूल के पर्यावरण की स्थिति कैसी है और उसे किन उपायों से और अधिक दुरुस्त किया जा सकता है। और इस विषय पर आज हमारे बीच बातचीत के लिए मौजूद हैं शासकीय भीमराव अंबेडकर कॉलेज आमला के पूर्व प्राचार्य, जिन्होंने शासकीय जयवंती हक्सर महाविद्यालय बैतूल में लंबे अरसे तक जूलॉजी डिपार्टमेंट को संभाला है और साथ ही

0: साथ लंबे समय से जिले के पर्यावरण पर भी इनका शोध कार्य जारी रहा। आप हैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल, पर्यावरण की दृष्टि से पहले के बैतूल और आज के बैतूल में कितना फर्क आया है?
1: मैं पहले तो आपको अपने भूतकाल में ले जाना चाहूंगा थोड़ा सा, उससे हम कंपेयर अभी वर्तमान को कर पाएंगे। 1977 में अगर आप देखें, जिस समय मैं रायपुर से यहाँ आया
0: जी,
1: उस समय पंखा घर में होना अपने आप में एक अजूबा हिस्सा था कि पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी। बारिश का एवरेज जो था वो 42-43 से अबव था।
0: अच्छा।
1: इंच के हिसाब से देखेंगे आप तो वो समय था जिस समय हमारा पूरा बैतूल सागौन, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और न जाने कौन कौन से बहुत सारे बड़े बड़े वृक्षों से आह्लादित था। ठीक है, धीरे धीरे जब हमने इसको विकास का रूप दिया, जो कि विकास नहीं है, हमने पहले उनको काटना शुरू किया, घर बने, खेत कम हुए, जंगल कम हुए, इससे टेम्परेचर बढ़ा। और एक जमाना ऐसा आया, जैसे मुझे याद है 1985-85 की बात है, इस समय पहला कूलर आया था। जब खरीदा गया तो लोग हंसने लगे कि कूलर भी खरीदना आपको पड़ रहा है, क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन आज की स्थिति ये है, जब हम आज बैठे हुए हैं 2026 में, एसी भी बहुत मुश्किल से काम कर पा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं एसी भी। इसका सीधा सीधा हम जोड़ना चाहते हैं इस चीज को हमारे पर्यावरण से, क्योंकि हमने विकास के नाम पे कह लीजिए या सुविधा के नाम पे कह लीजिए, हमने रोडें बनाना शुरू की, पेड़ काटने शुरू किए, हमारे जो वनस्पति है उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया, और इससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर हमको ज्यादा मिलना शुरू हुआ। बारिश कम हुई, आप देखते हैं कि उस समय 42-45 इंच बहुत कॉमन बात थी, आज हम 30-35-37 के आसपास ही रुक जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे वन को काम करने का एक नतीजा हमारे सामने आ रहा है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ पर्यावरण में भी क्षति आई है।
1: जी, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन केवल पौधे लगाकर फोटो खिंचवा कर बैठ जाना मैं नहीं मानता हूँ। मेरा कहना कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेना हो कि जिस पौधे को मैंने लगाया है कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि एक पौधा कम से कम 5-7 जिंदगियां देता है। याद रखिए, ऑक्सीजन हमको वहीं से मिल रही है।
0: अच्छा।
1: हमारी जितनी भी अपशिष्ट कह लें, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है, वो बना के हमको देता है भोजन, वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमारा जीवन रेखा है, हम उसी को काटने में लगे हुए हैं।
0: आप एक लंबे अरसे तक बैतूल में जूलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देते रहे, जीव जंतु पर लगातार काम करते रहे, तो ये बताइए कि जैव विविधता का हमारे पर्यावरण पर कैसा असर होता है?
1: देखिए, ये इकोसिस्टम है, ऐसा कहा जाता है, जो प्रोड्यूसर है उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे चलते हैं। जिसने पैदा किया उस पर दूसरा डिपेंड है, दूसरे पे तीसरा डिपेंड है, तीसरे पे चौथा है। एक ऐसा पिरामिड बनता है कि जो प्रोड्यूसर है उस पर सबसे ऊपर वाला तो नहीं डिपेंड है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। अब हमने प्रोड्यूसर को ही काम किया, जहाँ घास के मैदान थे वो खत्म हो गए, क्योंकि आपने बिल्डिंग बना ली, आपने कॉलोनी बना ली है, उस पर जो डिपेंड करते थे कीड़े मकोड़े वो कम हो गए। जब वो कम हो गए तो उसके ऊपर का जो सेक्शन है जिसको हम कहते हैं लेवल, वो चूहे हैं या उससे बड़े जानवर हैं, वो कम हो गए। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे शेरों की संख्या बहुत कम हो गई। अगर हम कहें कि आपने शिकार से मारे हैं तो ये तो एक कारण था, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी।
0: अच्छा।
1: कि हमने इस इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया और आज भी कर रहे हैं हम। जैसे मैं पिछले 20 साल से बर्ड्स पे काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जब आया हूँ बैतूल, तब से मैंने चील मुश्किल से देखी हो, गिद्ध देखे थे किसी समय।
0: अच्छा।
1: गिद्ध थे, चील थे, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि हमने जानवरों को दवाइयां देना शुरू की, जानवर मरते हैं, उन जानवरों को साफ करने का काम हमारे गिद्ध और चील करते थे, बड़े कौवे करते थे, अब ये धीरे धीरे खत्म हो गए। ये निश्चित रूप से कि ये कम होने से नीचे की जो जनसंख्या है कीड़े मकोड़ की वो बढ़ी है, और यही कारण की बीमारी भी उससे आई है। तो हमारा पर्यावरण, चूंकि हम कहते हैं पर्यावरण या इकोसिस्टम, इको मतलब हमारे आसपास का, आइकॉस, हमारे घर के आसपास के वातावरण को हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो इसका असर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है।
0: तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए। सर, हमारे जिले की प्रमुख समस्या है जल का संरक्षण, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बरसात का पानी जो है ठहरता तो नहीं है। सरकार जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के जरिए अपनी कोशिश कर रही है, तो ऐसे में जल संरक्षण को ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाने के लिए हमारे जिले के लोगों का क्या दायित्व बनता है?
1: देखिए, सरकार ने पहले तो वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी कर दिया और अच्छा भी था, उसको कुछ परिणाम मिले, लेकिन लोग आज भी जागरूक नहीं है। मकान बनाते हैं, अगर म्युनिसिपल वाले मजबूर ना कर दें कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो ही करेंगे, अन्यथा अपने मन से नहीं करते। दूसरी बात है, पहाड़ी इलाके, ऐसा नहीं है कि हमारा बैतूल पहाड़ी इलाका है, आप

0: शिमला चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए पूरा, वहां भी तो पानी की समस्या हो सकती है, लेकिन उनकी प्लानिंग ये है कि छोटी छोटी नदियों को उन्होंने स्टॉप डैम बना रखे हैं, एक प्लानिंग से स्टॉप डैम है। आप बैतूल में देखिए, पहले एक या दो डैम हुआ करते थे, अब कुछ डैम बने हैं,
1: अच्छा
0: बड़े डैम बने हैं, उनसे हमको फायदा तो हुआ है।
1: अच्छा,
0: आपके घर में ताप्ती का पानी आने लगा, ताप्ती जी बहुत दूर है लेकिन आपके घर में आने लगा, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग अच्छी तो हुई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वो जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है। छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए जाए, केवल बोरी बंधान कर देना अपने आप में काफी नहीं।
1: अच्छा,
0: मैंने तो एक बार ये सजेस्ट भी किया था कि जिस नदी में पत्थर पड़े हुए हैं उन पत्थरों को वहीं यूज कीजिए, उसकी रेत वहाँ यूज कीजिए, पत्थर यूज कीजिए, केवल आपको सीमेंट लग रही है, सीमेंट का खर्चा आप कर सकते हैं। ये काम आप देखेंगे उत्तराखंड में बहुत अच्छा हुआ है।
1: अच्छा,
0: उत्तराखंड में उन्होंने क्या किया, नदी के अंदर ही बहुत बड़े गड्ढे कर रखे हैं उन्होंने।
1: अच्छा,
0: और जब पानी आता है तो पहले गड्ढे में भरता है, फिर बह जाता है पानी, तो कम से कम उस गड्ढे के आसपास के किसान उसका उपयोग कर सकते हैं, प्लांटेशन में कर सकते हैं और अपने खेती में कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये हमको बहुत जरूरी है हमारे बैतूल में करने के लिए।
1: रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपने बात की
0: जी,
1: ये कितना कारगर है?
0: ये बहुत है, जहाँ तक मैं साइंटिफिकली समझता हूँ इस बात को, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो पानी जा रहा है वो भले ही आपके ट्यूबवेल को ना मिल रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर बह के दूसरे ट्यूबवेल को तो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फायदा हो रहा है। हालांकि मैंने भी अपने घर में करा रखा है, उसका फायदा मुझे मिला है, बहुत ज्यादा मिला है।
1: अच्छा,
0: तो उसकी एक प्लानिंग होती है, जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से बनाना चाहिए। खर्च ज्यादा नहीं, 10-12 हजार का खर्च होता है, जब हम लाखों के मकान बनाते हैं तो 10-12 हजार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, कर लेना चाहिए उस मामले।
1: बिल्कुल,
0: तो लोगों में जागरूकता तो लाना बहुत जरूरी है।
1: शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगलों के बीच हरियाली को कैसे बचाएं, ये एक विषय बार बार सामने आता है, और हमारे शहर में भी दिन ब दिन नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ऐसे में संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है हरियाली और विकास के बीच?
0: देखिए, सबसे पहले तो आपसे कहूंगा कि जंगलों में जो पेड़ कम होते जा रहे हैं इस पर तो ध्यान देना ही होगा। आज भले ही वो हमारे लिए फायदे का काम हो सकता है, लेकिन भविष्य में पेड़ कम होंगे, आदमी पर उसका असर देखने का मिलेगा। आज ही देख रहे हैं आप, है ना, हमारे यहाँ इतनी पहाड़ियां हैं, उसका शोषण हो रहा है पहाड़ियों का। पहाड़ियां बड़ी मुश्किल से बनती है, हर बार ज्वालामुखी के बाद एक नया स्पीसीज बनती है, चाहे पौधे की है, एनिमल की बनती है।
1: अच्छा,
0: अब ज्वालामुखी कहाँ है, हमारे यहाँ नहीं, लेकिन वो पहाड़ तो है जिनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। हम रोड बनाने के लिए वहां से खोद ले रहे हैं मिट्टी, पहाड़ कम हो गए आपके पास।
1: बिल्कुल,
0: जब पहाड़ कम हो गए तो आपके पास बादलों को रोकने की जगह कहाँ है, ये तो बताइए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो नुकसान है। हमको सबसे पहले इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां चल रही उसको रोकना बहुत आवश्यक है।
1: अभी आपने वनों की कटाई की बात की, बैतूल जिला जो है अपने समृद्ध वन क्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है और जिले की वन उपज भी अच्छी है, तो ये आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है?
0: आप देखिए, नेचर अपने हिसाब से ही अपने आप को बैलेंस करती है। अगर सागौन का एक पेड़ है, सागौन का बीज गिरता है तो बहुत कड़ा होता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, या तो पक्षी जैसे अपने हॉर्नबिल है या दूसरे जो है उसको तोड़े तभी वो उसमें से जर्मिनेशन होगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अगर जंगल में नीचे पत्तों में आग लगती है तो उसका ऊपर का कोट टूटता है। आप ये बताइए कितनी बार हम जंगल जाके सागौन उगाए, नहीं उगाए, बरसों से खुद ही नेचर उसको करता रहा। अभी स्थिति ये हो गई कि सागौन के बीज, मुझे कहने में संकोच बिल्कुल नहीं है, सागौन के बीज यहाँ से कलेक्ट करके पौधे बना के हम दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। वो सागौन के बीज जो वहाँ पड़े हुए हैं वो स्वयं ही उग कर एक नया पेड़ बनाएंगे, लेकिन वो संभव अब नहीं हो रहा है। महुए के पेड़ आप देखिए, हम जरूर कहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई उसका उपयोग करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: बहुत सारी संस्था हमारी अच्छी संस्था है जो इस पर काम कर रही है। आप देखेंगे हाइसिंथ जो है, जिसको अपन जलकुंभी कहते हैं, बड़ा हल्ला मचा हुआ कि जलकुंभी हो गई। भोपाल और बड़े जगह पर जहाँ पर की वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, वो हाइसेंट बहुत जबरदस्त है।
1: हमारे यहाँ माचना नदी में भी ये समस्या
0: माचना में है, लेकिन उसका उपयोग हो सकता है। कुछ संस्थाएं आए तो उपयोग इतना अच्छा है कि पहली बात तो जैसे उसका मेडिसिनल उपयोग है,
1: अच्छा,
0: अस्थमा में उसका उपयोग है,
1: अच्छा,
0: उसकी जो डंडी निकलती है उससे क्राफ्ट बनता है,
1: अच्छा,
0: और नॉर्थ ईस्ट में या बिहार में ऐसी जगह पर उससे टोकनी बन रही है,
1: अच्छा,
0: उससे पर्स बन रहे हैं, उससे कपड़े बन रहे हैं, इसी
1: जलकुंभी से अच्छा
0: कपड़े बन रहे हैं, उससे कपास के साथ मिलकर कपड़े बनाए जा रहे हैं,
1: अच्छा,
0: उसका उपयोग है। बस इतनी जरूरत है, हमको एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, उसको निकालना है, उसको सुखाना है, वो कैसी प्रोसेसिंग करना है। हमारे यहाँ के जो वर्कर्स कह लें, जो हमारे साथी श्रमिक भाई या जो रोजगार चाहते हैं, इनके बहुत अच्छा रोजगार का साधन है वो,
1: अच्छा,
0: वो बेकार चीज नहीं है। हालांकि जहाँ जलकुंभी होती है वहाँ मछलियां मर जाती।

0: कि जल कुंभ भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेती है।
1: बिल्कुल यही कहा जाता है।
0: हाँ यही कहा जाता है। तो है भी वह चीज कि ऑक्सीजन ना मिलने से मछलियां मर जाती हैं, एक नुकसान है।
1: हाँ।
0: लेकिन कम जगह पर जहाँ पर मछलियों के बहुत पैदावार नहीं है वहाँ मछलियां मर भी जाएं तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा फायदा हमको है। इस प्रकार के छोटे छोटे हमको प्रोजेक्ट्स हमारी संस्थाओं को देना होंगे।
1: आपने बर्ड्स वाचिंग पे बहुत काम किया है ना। अभी पिछले दिनों हमारे बैतूल कार्यक्रम में हमने एक पक्षीविद से बात की, उन्होंने हमें बताया कि बैतूल जिले में 300 से ज्यादा प्रजातियां की पक्षियां हैं, प्रवासी पक्षी भी मौजूद है उसमें, और इसके अलावा 150 से ज्यादा तितलियां यहाँ मौजूद है।
0: यहाँ वो तितलियाँ मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है मध्य प्रदेश में।
1: अच्छा।
0: हाँ, जैसे ग्रीन पैंसी है, येलो पैंसी है, ये मिलती है और ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक भी है।
1: बिल्कुल, बैतूल के पर्यावरण को यही समृद्ध बनाती है।
0: हाँ, जब तक कि ये कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, बर्ड्स नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण नहीं जाएगा, ना फल बनेंगे ना दूसरा पौधा बनेगा,
1: ना बायोडायवर्सिटी।
0: बायोडायवर्सिटी का तो बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कीड़े मकोड़े हम शब्द बोलते जरूर,
1: बिल्कुल
0: अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इतने फायदेमंद है, हमारे मित्र है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। किसान ने केवल बीज लगा दिया, एक पौधा उग गया, तो उससे फल तो नहीं बनना जब तक कि पॉलिनेशन नहीं होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। मधुमक्खियां हैं, अगर सरसों के खेत में मधुमक्खियां हैं तो सरसों का बीज तभी बनेगा जब उसमें पॉलिनेशन होगा। मधुमक्खियों की बात अगर करें तो आजकल तो बॉक्स लगाने लगे हैं, पर्यावरण को उससे भी सुधारा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: लोग बॉक्स रखते हैं, तीन प्रकार की चीजें उससे प्रोडक्ट मिलता है हमको। मधुमक्खी से एक तो परागकण मिलता है जब वो लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा शहद मिलता है, और जिस जगह पर वो शहद बनाती है वो वैक्स बनता है।
1: अच्छा।
0: येलो वैक्स, जिसे हम फर्नीचर और दूसरे मेडिसिन में भी यूज करते हैं।
1: अच्छा।
0: तीन चीजें मिलती हैं। तो इन चीजों से हमारे बच्चों को, जो नवयुवक हैं या जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, इनको हमको उससे संबंधित ज्ञान देना होगा।
1: हमारा क्षेत्र तो प्रवासी पक्षियों का भी क्षेत्र है।
0: हाँ, प्रवासी वो पक्षी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, चाहे वो लोकल के हो, चाहे सर्कुलर हो या लॉन्ग डिस्टेंस के हो। जैसे आप साइबेरियन बर्ड्स को देखेंगे तो रशिया से हमारे केवलादेव तक आ जाते हैं।
1: अच्छा।
0: राजस्थान तक कुछ पक्षी जो है वो श्रीलंका चले जाते हैं, कुछ गुजरात के फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो हम माइग्रेटरी बर्ड्स पर काम कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन हम उनका कंजर्व नहीं कर सकते उनको, क्योंकि कुछ समय के लिए रहते हैं। उनको यहाँ अंडे देना है, अंडे देना है, बच्चे निकलते हैं, बच्चे साथ में चले जाते हैं। उतने समय तक के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उनको वॉच करने की नहीं है। लेकिन जो हमारे लोकल पक्षी हैं, जैसे खासकर आप देखेंगे हॉर्नबिल, हमारे ग्रे हॉर्नबिल इतना रिच है, ड्रोंगो उड़ते हुए कीड़े खा लेते हैं।
1: इनका हिंदी नाम भी बताते चलिए ना,
0: कोतवाल बोलते हैं। जैसे ब्लैक ड्रोंगो है और बदक चौचा, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सशक्त स्तंभ के रूप में है और इनकी कमी हो रही है। हॉर्नबिल है, बड़े बड़े दरख्तों के अंदर रहता है और उसमें अंडे देता है, फीमेल अंदर बंद हो जाती है, बंद कर देती है, तो उसका एक लाइफ साइकिल है।
1: अच्छा।
0: अब जब हम बड़े पेड़ काट देंगे तो ये कहाँ जाएंगे?
1: बिल्कुल।
0: तो ये जगह छोड़ के वो कहीं आसपास के जिलों में चले जाएंगे, या आसपास के जिलों में कट रहे हैं तो और दूसरी जगह चले जाएंगे। तो हमारे पास तो पर्यावरण के जो सशक्त माध्यम है उसको हम इनडायरेक्ट वे में केवल एक पेड़ को काटने से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मेरा मानना।
1: सर, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली यानी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल का असल अर्थ क्या है, और एक आम आदमी अपनी दिनचर्या में इसे कैसे शामिल कर सकता है?
0: देखिए, मनुष्य अगर इको फ्रेंडली नहीं है तो बीमार है। तो ये इसलिए मानना होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे खाने का एक पैटर्न बना रखा है। हम धतूरा रोज नहीं खाते, दाल चावल के साथ धतूरा नहीं खा सकते, है ना। तो आप क्या खाते हैं? राइस ले रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, हमारी वो हरी सब्जियां खा रहे हैं, जो नॉनवेज खाते हैं अंडे खा रहे हैं और दूसरी चीजें खा रहे हैं जो उनको डाइजेस्ट हो जा रही है। ठीक है, तो आप इको फ्रेंडली क्यों हो? क्योंकि आपको हमारे पूर्वजों ने पहले बता रखा है कि ये खाने से आपका फायदा है और ये नहीं खाओगे तो नुकसान हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो जो नुकसान क्या है? हॉस्पिटल पहुंचना, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाता है आपको। तेल किस प्रकार का खा रहे हैं, मसाले किस प्रकार का खा रहे हैं, इंजेक्शन लगी हुई हम लौकियां खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये चीजें हमारे जब अंदर जाती हैं तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन चूंकि रेसिस्टेंस कम हो रहा है, एसी में हम रह रहे हैं, पैदल चलना बंद हो गया, गाड़ियों पे चल रहे हैं, तो हमारा रेसिस्टेंस जब डेवलप नहीं होता अच्छी तरह से, तो कोई भी चीज जो अंदर जाएगी, फॉरेन बॉडी हम जो खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका रिवर्स रिएक्शन होगा। और इसीलिए इको फ्रेंडली मतलब ये है कि जो प्रकृति में दी हुई चीजें जो हमारे पूर्वजों ने हमको स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताई है, बस उससे आप दोस्ती कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप बीमार हैं।
1: तो ये है पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठाती रहती है
0: जी।
1: लेकिन मौजूदा सरकारी कानून कितने कारगर साबित होते हैं?
0: कानून अपनी जगह है, पालन करवाने वाले अपनी जगह है, पालन नहीं करने वाले ज्यादा अभी शक्तिशाली हो गए। उनको इसका डर नहीं है कि आने वाले समय में हमको कौन सी मुसीबतें झेलनी होगी। आर्थिक हम समृद्ध हो जाएं किसी भी रूप में, पर्यावरण एक तरफ चला जाए उससे कोई मतलब नहीं है, समाज एक तरफ चला जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन सुखी काहे से है? पैसों से, और सब कुछ लगा हुआ है व्यापार में अपने। हमको हर एक एनजीओ को कह लें या बच्चों को समझाएं, हम स्कूल कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट हमको ये सब एक तरीका अपनाना पड़ेगा। बच्चों को, नई पौध को समझाना होगा कि ये नुकसान करने से ना केवल तुमको, तुम्हारे आने वाली जनरेशन को भी नुकसान होगा, ये उनके दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण का एक भी कण, एक भी हिस्सा, चाहे वो कीड़े मकोड़े के रूप में हो, जानवरों के रूप में हो, मनुष्य के रूप में, इसका नुकसान करोगे तो इनडायरेक्ट वे में तुमको आने वाले समय में नुकसान होगा। ये हमारे लिए जरूरी है करना। तो सरकार अपना काम करती है, फॉलो करवाने की कोशिश करती है, लेकिन करेगा कौन? व्यक्तिगत आदमी करेगा।
1: एक लंबे समय तक आप महाविद्यालय में युवाओं को शिक्षा प्रदान करते रहे, युवाओं से आपका एक बहुत ही गहरा नाता रहा है, तो आज के युवा का कैसा रुझान है अपने पर्यावरण के प्रति और कैसा होना चाहिए?
0: कुछ एनजीओज ही काम कर रहे हैं, जो किसी सर्टिफाइड एनजीओ से जुड़ गए हैं वही बच्चे काम कर रहे हैं, बाकी से आप देख लीजिए कहीं नहीं। अगर प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है हमारा युवा, वहीं फेंक के चला जाता है। उसको इतना ना ज्ञान है ना उसमें इतनी सेंसिटिविटी है कि उठा के वो डस्टबिन में डाल दे। हालांकि बच्चों के बीच में रहा हूँ, युवाओं के बीच में रहा हूँ, इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग सामने आए, क्योंकि युवाओं को समाज के बुजुर्ग व्यक्ति ही समझा सकते हैं। युवा युवा होता है, हम भी युवा थे, हमको जब कुछ चीजें गलत बताई गई कि भाई ऐसा नहीं करना है, हम उससे हट गए तो हम बैलेंस हुए। आज के युवाओं को समझाने वाला कोई नहीं है ना, जब तक कि आप एक गाइड के रूप में नहीं आएंगे, युवाओं को समझाना कठिन काम।
1: अब प्रदूषण की एक बात करते हैं, वातावरण स्वच्छ निर्मल हो इसके लिए हवा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है, कौन कौन से उपाय हैं?
0: देखिए सर, कोशिश तो बहुत ज्यादा की जा रही है, जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का एक अल्टरनेट आया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई है, बैटरी वाली व्हीकल्स आ गई है, सोलर वाले व्हीकल्स आ गई है। कर तो रहे हम, लेकिन जिस रूप में पर्यावरण को देखते हुए विस्तार होना चाहिए वो अभी नहीं है। अयस्क की जरूरत पड़ी, वो अयस्क कहाँ से आएगा? वो कम होता जा रहा है। बुजुर्ग तो नहीं चलाते, जवान चला रहे हैं गाड़ियां ज्यादातर
1: जी।
0: उनको बताना होगा कि पैदल चलना आवश्यक है, साइकिल पर चलना बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य भी सुधरता है, पर्यावरण भी सुधरेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये जागरूकता बच्चों में लाना चाहिए।
1: अंत में हमारे श्रोताओं को, विशेषकर युवाओं को, आपका संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में?
0: बच्चों से बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बच्चों, केवल पौधे लगाकर घर मत चले जाइए, आप तो पौधे के सिर पर हाथ रख के कसम खाइए कि जब तक तू 6 और 7 फीट का नहीं हो जाएगा, तेरा साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे पानी भी दूंगा मैं, तुझे खाद भी दूंगा, तेरी सुरक्षा भी करूंगा, तुझे जानवरों से बचाऊंगा भी। एक पौधा एक बच्चे ने लगा लिया तो आप समझिए कि उसने पर्यावरण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया।
1: तो श्रोताओं, ये थी बैतूल के पर्यावरण विषय पर कुछ बहुमूल्य बातें जूलॉजी विषय के स्पेशलिस्ट और शासकीय भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में इन बहुमूल्य जानकारियों और समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का प्रोग्राम हमारा बैतूल, जो केंद्रित था बैतूल के पर्यावरण विषय पर। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। तो अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ हम फिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारा बैतूल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल। इसमें आज का विषय था बैतूल जिले में पर्यावरण। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक जंतु विज्ञान से सुमन चटर्जी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। चंद लम्हों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जाने माने वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेन्द्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉ श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथहानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भिल, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शुभांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है। इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed. यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
7: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है में स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जाने माने वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, देश की सुनहरी धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दूसरा आदमी अभी अपनी स्पेन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

0: सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई, जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: विचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके।

संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी।

लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निखरेंगे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चार फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

तेलंगाना निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन,

संतोष कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। पांडर कवड़ा के श्रोता है अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। बल्लाशाह के श्रोता है सूरज, प्राची और एकलव्य। अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत की श्रोता आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सादिक अली, सारिक अली खान। आप सभी सुनना चाहते हैं बॉबी फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीत को लिखा है विठल भाई पटेल ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आपके मीत ये गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगली व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। सब्जी मंडी बुलढाणा के श्रोता हैं सब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजाइनम और मुदस्सिर हुसैन। अन्य श्रोता हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता उदयभान पाल, जैसे हैं दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। आप सुनना चाहते हैं एक नजर फिल्म का ये गाना, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कार्यक्रम में अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। शाहजी नगर देलगुर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। संजय कॉलोनी खंडवा के श्रोता अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल हक। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। गांधीग्राम गुजरात के श्रोता प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। आप सभी सुनना चाहते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: कहां आपका

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। आर्यनगर कोहका भिलाई के श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला के श्रोता अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश के श्रोता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। अन्य श्रोता हैं सुनील जैन, अमित जैन, दीपाली जैन, अंशुल, तृप्ति जैन, वाणी, ऋषिका, सुमित जैन, श्रद्धा जैन और इनके घर के सभी लोग। आप हैं आमला से, शंकर कॉलोनी आमला से। आप सभी सुनना चाहते हैं गुलामी फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में, बोल गुलजार के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। इस कार्यक्रम में अंतिम व्हाट्सएप फरमाइश आप सभी सो लोगों की शामिल हो रही है। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। बोरसला नैला छत्तीसगढ़ के श्रोता प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू। आप सभी की फरमाइश है लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में वीर जारा फिल्म का एक गाना। बोल जावेद अख्तर के संगीत।

लता मंगेशकर और सोनू निगम के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं पंकज उधास।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें गायक हैं पंकज उधास।

पंकज उदास के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। चंद लम्हों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेली अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and